सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज दिन सोमवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा

0: सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जीवन के हर दिन में शांति का गीत गूंजे और हर रात तेरे स्मरण से व्यतीत हो, मन में बस तेरे ही नाम का फूल हो और हर अशांति से हम दूर हों। प्रभु ऐसा वरदान दे।

जीवन के हर दिन में शांति का गीत गूंजे और हर रात तेरे स्मरण से व्यतीत हो, मन में बस तेरे ही नाम का फूल हो और हर अशांति से हम दूर हो, प्रभु ऐसा वरदान दे।

0: श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से श्वेता के साथ।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए

0: अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: हे भगवान, जो बादल मन में छाए वो तेरे प्रकाश से मिट जाए। शांत हृदय, निर्मल विचार, इसी को पाने की प्रार्थना है। यही तो है जीवन का सच्चा उपहार।

0: इसी भजन के साथ आज का भक्तिमय सफर यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित थी मैं श्वेता। कार्यक्रम प्रसारित किया गया आकाशवाणी गोरखपुर से। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: भातृत्व संबंध, एक ऐसा संबंध कि प्रायः हम सब उन संबंधों में रचे बसे हैं। आज वह प्रेम वह भाव भातृत्व संबंध में भी न रहा जो भातृत्व संबंध में प्रायः आज के 20-25-30 साल पूर्व रहा करता था, कि बड़ा भाई बोले और छोटा भाई चुप होकर के स्वीकार करता था। आज सबको बड़ा बनने की होड़ है। हम रामकथा सुनते तो हैं, रामकथा दर्शन क्या कराती है कभी हमने समझने का प्रयास नहीं किया। अन्यथा राम का चरित्र, लखन का चरित्र, भरत लाल जी का चरित्र और शत्रुघ्न लाल का चरित्र, मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण हमारे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में नहीं हो सकता, जो प्रमाण हमारे राघवेंद्र सरकार और चारों भाइयों ने इस समाज को दिया है। एक भाई ऐसा है जिसे जब पता चलता है कि मेरे पिताजी से मेरी मैया ने कहा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, राम जी के चेहरे पे शिकन नहीं है, राम जी के चेहरे पे वही लालिमा वही मुस्कुराहट है, मेरा भाई ही तो बन रहा है। कभी चिंतन करिए उस भातृत्व प्रेम का, कि जिस दशरथ जी का शरीर क्षीण पड़ा हुआ है, जो राम राम कह के व्याकुल हैं और वहाँ पे राघवेंद्र सरकार अपनी माँ से आके कहते हैं तो किसी की बुराई नहीं करते, कैकेयी मैया के बारे में भी कुछ नहीं कहते। कौशल्या मैया पूछती हैं क्या हुआ, क्या कारण है, पूरे अयोध्या में हल्ला मचा हुआ है, तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भरत राजा बनने वाला है, मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बनने वाला है। एक बड़े भाई का कर्तव्य एक छोटे भाई के राजा बनने पर इतनी प्रसन्नता राघवेंद्र सरकार को है। कौशल्या मैया ने कहा आप कहाँ, आपके बारे में क्या सोचा, तो उन्होंने कहा पिताजी ने मुझे उससे भी बड़ा राजा बना दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, किसी की बुराई नहीं, राघवेंद्र सरकार का त्याग, मेरा भाई भरत राजा बनेगा, इसकी प्रसन्नता साफ चेहरे पे झलक रही थी। कोई सिकन नहीं, कोई कष्ट नहीं, वही माधुर्य वही प्रेम। और इधर भरत लाल जी महाराज को जब पता चला, भरत लाल जी को जब सूचना मिली और भरत लाल जी जब आए और पता चला कि मेरे कारण मेरे भाई को बन जाना पड़ा, कई कई मियाँ से कहते हैं माँ हर माँ बालक का चतुर्दिक सम्मान मान बढ़े इसलिए सदैव तत्पर रहती है, लेकिन तू मेरी माँ होकर मुझे तुमने इतने बड़े पाप का कारण बना दिया।

0: मुझे तेरे गर्भ से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। न मैं जन्म लेता और न मुझे अपने भाई को वन में जाने का कारण मैं हूँ। वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे पिताजी इसलिए नहीं मरे कि मेरे भाई राघवेंद्र सरकार बन जा रहे हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु इसलिए हो गई कि मैं पापी भरत का मुख कैसे देखूं जिसके कारण उसका बड़ा भाई बन चला गया हो। मेरा मुख मेरे पिता कैसे देखते हैं जिसने अपनी माँ को त्याग दिया हो कि माँ, तुमने इस राज सत्ता के कारण मेरे भातृत्व प्रेम में जो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा वह तुमने मांग लिया। एक भाई है लखनलाल, जिसने अपनी पत्नी तक से पूछने नहीं गए और 14 वर्षों तक वह जंगल में रहे, सहन नहीं की और अपने भाई की रक्षणार्थ खड़े रहे कि मेरा भाई अकेले कैसे जाएगा। अपनी माँ से पूछते हैं क्या करो, माँ ने कहा कि तुम मुझसे पूछने आए हो। लखनलाल जी महाराज माँ का तो आशीर्वाद लेने राम जी के कारण गए, लेकिन पत्नी के पास नहीं गए और वो निकल पड़े अपने भाई के साथ वलकल वस्त्र धारण करके। और एक भाई शत्रुघ्न लाल, जब देखा कि मेरा एक भाई वन में है और एक भाई उसकी सेवा में है और एक भाई भरत हैं जो नंदीग्राम में जाके तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं, तो मौन होकर इस अयोध्या का साम्राज्य चलाना है, लेकिन यह साम्राज्य का राजा तो मेरे राघवेंद्र सरकार ही हैं। एक चारों भाई के इतने स्नेह और इतने प्रेम का दर्शन करने के बाद भी अगर हम अपने भाइयों में प्रेम न कर पाएं तो भातृत्व संबंध को समझना इससे सरल नहीं हो सकता।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त में बता दूं।

रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा राग मालकौस, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन।

सुगम संगीत के आज के प्रोग्राम में कलाकार हैं आशा भोसले। समय होगा रात्रि 8:15 पर। अनुराधा पौडवाल के गाए कुछ गीतों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में। दिन में 12:55 पर और सुबह 9:50 पर।

श्रोताओं, कृष्ण नंदन त्रिपाठी और मनीषा चौबे लेकर आएंगी कार्यक्रम खेती बाड़ी। इस कार्यक्रम में खर पतवार नियंत्रण के उपाय पर चर्चा सुनिएगा। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और श्री विनय कुमार की बातचीत सुनिएगा। विषय है पशुओं में गला घोंटू के लक्षण और बचाव। साथ ही कुछ लोकगीतों का भी आनंद ले सकेंगे इस कार्यक्रम में। खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय नोट कीजिए, 6:10।

आज का गीतकार इस कार्यक्रम का समय होगा रात 7:31 पर और आज आप आनंद बख्शी के लिखे नगमों को सुन सकेंगे इस कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

शाम 5:35 पर समय होगा कार्यक्रम घर आंगन का। युवाओं का अपना प्रोग्राम युववाणी शाम 5:05 पर। दोपहर की सभा में खेती किसानी कार्यक्रम का समय होगा दिन में 1:50 पर। डॉ

विनोद बहादुर सिंह और श्री कृष्ण की बातचीत सुनिएगा। विषय है आम की रंगीन प्रजातियों की बागवानी। नारी जगत प्रोग्राम का समय होगा दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम में सखियां जानकारी लेंगी मॉनसून में त्वचा और बालों की देखभाल कैसे करें। ये प्रोग्राम रंजना लेकर आएंगी और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे घरेलू उपचार बनाम डॉक्टर की सलाह और सही खान पान के बारे में भी आप जानकारी ले पाएंगे। NCERT नई दिल्ली की प्रस्तुति प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय होगा दिन में 12:00। फिल्म संगीत को चाहने वाले श्रोताओं आप समय नोट कीजिए। पूर्वा सुहानी ये प्रोग्राम सुबह 7:31 पर प्रसारित होगा। हिट सुपर हिट कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:45 पर। आपकी फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम गाते गुनगुनाते सुबह 10:05 पर। गीतांजलि ये कार्यक्रम 11:30 पर दिन में और गीत सुहाने कार्यक्रम दिन में 12:30 पर। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी गोरखपुर है, प्रस्तुत है मानस गान।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूँ। मुझे श्रीराम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी गोरखपुर है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आगे।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट।

0: DTH service DD Direct Plus.
1: For details, log on to www.ddindia.com.
2: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
3: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
4: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
3: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
5: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हो गए हैं। अब से कुछ ही देर में क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत् सुरक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है।

0: एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत कल 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
3: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है, नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं, शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने बनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौलसी का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए पौधरोपण महाभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
4: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40,29,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
2: कल प्रदेश भर में जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
5: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंद्रा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में

0: कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। कल से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे।
2: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कल अयोध्या में बताया कि आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
3: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। एक रिपोर्ट।
4: EPFO की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़े मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
5: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
1: इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण

0: प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के संग। श्रोताओं, फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी बस अब से कुछ ही देर में।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
5: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
5: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
5: गाने के बोल,
6: गीतकार
5: और संगीतकार
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
5: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
5: गाते गुनगुनाते
6: सुनिए सुबह 10:05 पर।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पूर्वा सुहानी फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहला गाना बेजू बावरा इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में अभी आपने नया रास्ता फिल्म से ये भजन सुना। अगला भजन हमने लिया है चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में अभी आपने अमर फिल्म से ये गाना सुना। इसी के साथ श्रोताओं, पूर्वा सुहाने फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। सुबह के 8 बजे हैं, समय है समाचारों का, जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
2: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारी

0: के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6-लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6-लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से

0: चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और UAE को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वज़ीर-ए-आला सुविंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज़्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि यह नया कानून ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाक़वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: तबीयात के 56वें बैन अलाक़वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबीयात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्श आनंद बंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाज़ा होता है, जिसकी क़्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज़ ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज़ है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीककारों का पहला बैन अलाक़वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बावक़ार आलमी फोरम में, जिसकी मेज़बानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है, आला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वज़ीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वज़ीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज़ करेंगे, जिसमें मसनूई ज़हानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज़ पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबॉरेटरी का भी आगाज़ करेंगे, जो मौके वारदात पर शवाहिद बरवक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। इस तकरीब की खास बात यह है कि आला तकनीक से मुतालिक नुमाइश भी

0: जिसमें गूगल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े मुल्कों के जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी शामिल हैं। वजीर दाखिला दोपहर बाद सेकार से समृद्धि का खाका पेश करेंगे। वो धीगम का दौरा करेंगे और अमृत महोत्सव तकरीबात के दौरान सब्जियों के एक नए तामीर शुदा APMC अहाते को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज सुपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास MP Tech ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनक़द किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमीकंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हर एक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनअती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमत शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मकामात को शामिल किया गया है उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: सियात और शहरी हवाबाजी के महकमे के जरिए ये खिदमत मुश्तरक तौर पर शुरू की जाएंगी। आवाम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रियासती सरकार की तरफ से माली इमदाद के साथ सयाह रियायती किरायों पर टिकट बुक कर सकते हैं। रियासती सरकार फी टिकट पर 15,422 रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। हेलीकॉप्टर सियाहत खिदमात 18 जुलाई को शुरू होंगी जो हर हफ्ते और इतवार के रोज फराहम की जाएंगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बात किए हैं। पहले तजर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समंदर में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए उमूदी पोजीशन को यकीनी बनाना है जो अमले के तहफ़ की ज़रूरतों के लिए अहम समझा जाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज़ जगहों पर 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इसी तारीख तक शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के दूर दराज मकाम पर छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की शिद्दत में कमी आ जाने का इम्कान है। इधर मेघालय में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताज़ा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाज़ों के अमले के अलावा तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताज़ा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किए गए हैं। ईरान के प्रेस TV के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि आबनाए हुरमुज तजारती जहाज़ों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल अनुट अखबार

0: के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा फौजी महाजराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकाई और आलमी नताइज के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज़्यादा लोग जेर इलाज हैं। ये आग बार में निशब के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम अनुतिन चरनो रिकोल ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई हैं। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंकॉक के चतुचाक जिले में ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्सेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। ये सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज़ इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1-800-11-7800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सबयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाए अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाज़ों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है अम्मान के साहिल पर तजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलावामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ

0: ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 337.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कार्यक्रम है सुपरहिट अब से कुछ ही देर में।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: अगला गीत हमने लिया है दो आंखें बारह हाथ इस फिल्म से।

तुमसे भी आपने लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में ये गाना सुना। हिट सुपर हिट, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से। और अगला गीत हमने लिया है सत्य ज्ञानेश्वर इस फिल्म से।

0: पर नए फिल्म के इस गीत के साथ ही हिट सुपर हिट ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल के लिए आइए चलते हैं लखनऊ स्टूडियो।
1: दोस्तों, इसी गीत के साथ अब हमारा आज का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे थोड़ी देर में हो

0: होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 8 जुलाई 2026 को जननायक चंद्रशेखर स्मृति दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला, विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने जननायक चंद्रशेखर की स्मृतियों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ के तत्वाधान में लोक स्मृतियों में चंद्रशेखर विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चंद्रशेखर जी ने जो संकल्प लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे पूर्ण किया। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को सीख लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से कार्य करना चाहिए। संपूर्ण जनपद में अनेक जगह कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि दी गयी। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा राय ने बताया कि
3: चंद्रशेखर जी के साथ मेरी बचपन की एक अमिट स्मृति अंकित है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान हमें चंद्रशेखर जी को सुनने और उनसे मिलने के लिए पास के गांव में ले जाया गया। गांव के लोगों की समस्या को सुनकर बेहद ही सरल और स्वाभाविक भोजपुरी में उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का निवारण निश्चित होगा। ना कोई बड़े वादे, ना ऊंचा मंच, ना महंगे वस्त्र, एक सामान्य भारतीय व्यक्ति की प्रतिछाया चंद्रशेखर जी।
2: बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 29 जुलाई 2026 को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम वीर सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्वविद्यालय में दीक्षांत से पहले अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 10 गांव गोद लिया गया है, जिसमें गांव के शिक्षा, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए समाज कार्य विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर पुष्पा मिश्रा ने बताया कि
4: जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अष्टम दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में समाज कार्य विभाग द्वारा 7 जुलाई से 10 जुलाई तक विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषाई दक्षता, आत्मविश्वास तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना था।
2: बलिया में दानवीर भामाशाह की जयंती विकास भवन सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही भामाशाह के चित्रों एवं लघु फिल्म के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को उपस्थित लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिले के 10 प्रमुख करदाताओं को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न नए उद्यमियों एवं करदाताओं को भी सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में बलिया के उद्यमियों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत सत्तू और बिंदी के आकर्षक स्टॉल लगाए। वहीं खादी ग्राम उद्योग विभाग एवं सूचना विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं और उत्पादों की जानकारी दी गई। बलिया जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय एवं कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी को संचारी रोगों से बचाव की शपथ दिलाई गई तथा जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभय नारायण राय ने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार समेत अन्य संचारी रोगों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान और समय पर उपचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। वेक्टर वार डिजीज के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि एक

0: 31 जुलाई तक चलने वाले दस्तक अभियान के तहत आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस फाइलेरिया कालाजार कुष्ठ रोग सहित अन्य संचारी रोगों के बचाव के प्रति जागरूक करेंगे।
1: बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
2: फिरोजाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने घटना से 40 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसका सभी ने सम्मान करते हुए तारीफ की जा रही है। 1.5 वर्ष के मासूम की हत्या करने वाले को दोषी ठहराते हुए सजाए मौत की सजा खुले न्यायालय में सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि 30 मई 2024 को दिन दहाड़े 2:30 बजे जितेन पाठक उर्फ बिराज ने फिरोजाबाद के थाना शुकाहबाद क्षेत्र यादव कॉलोनी में मासूम बच्चे की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि ये घटना जिले में चर्चा गवे बनी हुई थी। पुलिस ने मात्र 6 दिन में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया और मात्र 1 माह 9 दिन में न्यायालय ने फैसला आ गया। DGC राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि
3: 1.5 वर्ष के बच्चे इस विराज अभियुक्त जो है निर्मम हत्या की थी। DM साहब जनपद फिरोजाबाद और SSP साहब विशेष निर्देशन था, उसी के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाह और बहस के उपरांत उस विराज को मृत्यु दंड की सजा से मुकर्रर किया है।
2: फिरोजाबाद जिले में तेज आंधी और वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और अलग अलग हादसों में जन एवं पशु हानि हुई है। पिछले दिनों फरियाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़रई गांव में तेज आंधी और तूफान के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 ग्रामीणों की असमय मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार मौसम अचानक खराब होने और तेज हवा चलने के कारण गांव के पास ही स्थित एक पुराना और विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर जा गिरा। जिस समय ये घटना घटी उस समय पेड़ के नीचे से गुजर रहे एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया था। प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। फिरोजाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिए जा रहे हैं और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन आवेदन करने की पर फ्री शिक्षा दिए जाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को शासन द्वारा पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की मंशा है कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे और गरीब मजदूर के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी राह पर चलते हुए फिरोजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार परिहार शासन के आदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि
4: सरकारी स्कूल नजदीक नहीं होते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे हमारे एडमिशन ले सकते हैं। उसके तहत सरकार ने जो है RTE एक्ट के तहत प्रावधान किया हुआ है। जो जनरल के लोग हैं 1 लाख से इनकम कम है वो, साथ ही साथ जैसे SC ST के लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है मार्च में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आता है और अप्लाई करके वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो RTE एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडाइज जो है उन्हीं के खाते में प्रोवाइड करा देती है।
2: फिरोजाबाद में स्वस्थ शासकीय राज चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर योगेश कुमार गोयल प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आम जनमानस को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यहां किडनी रोगियों को बेहतर त्वरित और निशुल्क उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी जन कल्याणकारी क्रम में चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस विभाग में मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससिया द्वारा 5 नई आधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया गया। इस नए विस्तार के बाद अब फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस विभाग में कुल मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 5 नई डायलिसिस मशीनें लगने से अब गरीब मरीजों को भी इलाज के लिए आगरा या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 25 मशीनों की इस संयुक्त क्षमता से मरीजों को समय पर विश्व स्तरीय इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। मशीनों की संख्या बढ़ने से अब प्रतिदिन डायलिसिस कराने वाले किडनी रोगियों की क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देश गान।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, यह आकाशवाणी गोरखपुर है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
2: हवा के दोष पर उड़ती हुई आवाज है अपनी, दिलों

0: बाशुऊर मगर बेवकार है। हो लाख बाशुऊर मगर बेवकार है, जिस आदमी के पास न बंगला न कार है, जिस आदमी के पास न बंगला न कार है। आती हैं जो नज़र मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ, आती हैं जो नज़र मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ, ये उम्र का असर नहीं गुर्बत की मार है, ये उम्र का असर नहीं गुर्बत की मार है। उतनी ही पस्ता कामती पर्दे में है छुपी, उतनी ही पस्ता कामती पर्दे में है छुपी। जिस आदमी का जितना बड़ा इश्तिहार है, जिस आदमी का जितना बड़ा इश्तिहार है। और शेर देखिए कि हुस्ने ख्याल हुस्ने अमल एक करके देख, हुस्ने ख्याल हुस्ने अमल एक करके देख। हर आदमी के हाथ में फूलों का हार है, हर आदमी के हाथ में फूलों का हार है। ये जानकर खुशी नहीं बेहद खुशी हुई, ये जानकर खुशी नहीं बेहद खुशी हुई। कोई तुम्हारा और भी उम्मीदवार है, कोई तुम्हारा और भी उम्मीदवार है। सोचो तो किस तरह से गुजारी है जिंदगी, सोचो तो किस तरह से गुजारी है जिंदगी। कातिल भी कत्ल करके मुझे सोगवार है, कातिल भी कत्ल करके मुझे सोगवार है। हर बार लुट रहा हूँ जो मंजिल के आसपास, हर बार लुट रहा हूँ जो मंजिल के आसपास। कैसे कहूँ मशीयते परवरदिगार है, कैसे कहूँ मशीयते परवरदिगार है। क्यों बार बार जाता हूँ दहलीज की तरफ, क्यों बार बार जाता हूँ दहलीज की तरफ। आखिर ये किसका आज मुझे इंतज़ार है, आखिर ये किसका आज मुझे इंतज़ार है। और मुझको नहीं है पेशिए गर्दन में कुछ दरेग, मुझको नहीं है पेशिए गर्दन में कुछ दरेग। तू आजमा ले गर तेरे खंजर में धार है, तू आजमा ले गर तेरे खंजर में धार है। और मकता है कि अंबर के बारे में तुम्हें धोखा न हो कोई, अंबर के बारे में तुम्हें धोखा न हो कोई। वो देखने में सिर्फ तगाफुल शियार है, वो देखने में सिर्फ तगाफुल शियार है। और एक गज़ल का मतला और चंद अशार और हाजिर खिदमत हैं कि एक कतरा ही दे दे जो तुझे आर नहीं है, एक कतरा ही दे दे जो तुझे आर नहीं है। वैसे भी समुंदर मुझे दरकार नहीं है, वैसे भी समुंदर मुझे दरकार नहीं है। और शेर मुलाजा फरमाइए कि अच्छा है कि पत्थर से नहीं है तेरी तखलीक, अच्छा है कि पत्थर से नहीं है तेरी तखलीक। जब खाक से बनकर तू लचकदार नहीं है, जब खाक से बनकर तू लचकदार नहीं है। ये कैसा ज़माना है कि अब कोई पड़ोसी, ये कैसा ज़माना है कि अब कोई पड़ोसी। दो बात भी करने को रवादार नहीं है, दो बात भी करने को रवादार नहीं है। मुश्किल है गिरा पाना उसे अंधे कुएं में, मुश्किल है गिरा पाना उसे अंधे कुएं में। जो शख्स के ख्वाबों का परस्तार नहीं है, जो शख्स के ख्वाबों का परस्तार नहीं है। मैं सबका गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको, मैं सबका गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको। और ये भी कोई मेरा गुनहगार नहीं है, और ये भी कोई मेरा गुनहगार नहीं है।
1: अभी आप जनाब खुर्शीद अंबर से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। और इसी के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की इजाज़त दें अपनी मेज़बान निकहत सिद्दीकी को। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम सुगम संगीत अब से कुछ ही देर में।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
6: डॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है,
7: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
8: RHL Gold, TMT

0: दरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, और आइए इनकी आवाज में कुछ देवी भजन सुनते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: सुगम संगीत के आज के प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं देवी भजन अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आप कुछ देवी गीत सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: voir.
1: Medium wave 330
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities.
1: Medium wave 330.3 meter, yani 909 kHz aur FM 100.1 MHz par hum Akashvani ke Gorakhpur kendra se bol rahe hain. प्रोग्राम गाते गुनगुनाते अब से कुछ ही देर में.
3: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान. तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच. हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर. हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं.
1: श्रोताओं, गाते गुनगुनाते प्रोग्राम का पहला गाना हमने लिया है जबक फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में.

ये गीत हमने लिया था मेरा साया इस फिल्म से। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। श्रोताओं, कभी कभी किसी की कमी सिर्फ दुख ही नहीं देती बल्कि हमें उस रिश्ते की गहराई का एहसास भी कराती है। यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बस दिल के किसी कोने में बस जाती हैं।

मेरा नाम जोकर इस फिल्म से। अभी आपने ये बहुत ही मशहूर गीत सुना मुकेश की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गाना है रोग फिल्म से, आवाज़ के की।

हर मुस्कुराहट के पीछे कहानी होती है और श्रोताओं हर खामोशी के पीछे कई अल्फाज। जिंदगी हमें सिखाती है कि हर एहसास को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर सह जाना भी हमारे खुद के लिए अच्छा होता है। रोग फिल्म से भी आपने गाना सुना। श्रोताओं, कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगला गाना हमने लिया है सत्यम शिवम सुंदरम, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज। गाते गुनगुनाते ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से श्वेता के साथ।

सत्यम शिवम सुंदरम स्विन सभी आपने ये गाना सुना। श्रोताओं, हर बिछड़ना सिर्फ जुदाई नहीं होता, कभी कभी वो हमें अपनी पहचान से मिलाता है और बताता है कि सब्र भी मोहब्बत का एक खूबसूरत रूप है। अगला गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में, झुमरू फिल्म से

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

1998 में आई फिल्म मधुमती का ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब मैं जो आपको गीत सुनवाने जा रही हूँ वो है फिल्म हरी दर्शन से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

0: सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि।
1: प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री

श्रोता, जो लोग हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं वो अक्सर हमारी दुआओं और यादों में हमारे करीब रहते हैं। मोहब्बत का रिश्ता फासलों से कमज़ोर नहीं पड़ता और हमें ये याद रखना चाहिए कि चलना ही ज़िंदगी है। दुख दर्द को समेट कर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमराही फिल्म से चलिए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला नगमा।

श्रोताओं, वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी दिल की दहलीज पर वैसे ही महफूज रहते हैं। शायद इसी का नाम याद है। और अब आइए सुनते हैं मशाल, फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में ये भजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर

0: लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 परीक्षणों से इसरो ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल स्तर का नेतृत्व करेंगे। वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
6: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
8: शास्त्रीय संगीत, नृत्य।

0: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम में आ जाइए, सुनते हैं श्री भोला यादव और उनके साथियों के गाए लोकगीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में इस समय आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं भोला यादव और उनके साथियों को। आइए सुनते हैं इनका गाया अगला गीत।

0: इसके साथ ही आज का लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। कलाकार थे भोला यादव और उनके साथी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
5: बीटेक पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
6: हाँ उल्लू का पट्टा बोलिए, आप ही इंसाफ करो, क्या मैं देखने में क्या उल्लू का पट्टा दिखाई देता हूँ मां जी?
7: नहीं तो तुम तो अच्छे खासे शरीफ आदमी मालूम होते हो।
6: ए, ऐसी कोई बात हो गई ना, काम तो मुझे आपके मतलब का भी आता है महारानी।
7: मेरे मतलब का?
6: हाँ, मैंने देख लिया ना, आपका तो भक्ति भाव है, कभी आपको फुर्सत होगी।

0: अगले गीत इस संदेश के बाद।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: मोहम्मद रफी को भी आप सुन रहे थे फिल्म चित्रलेखा में।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को भी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था गंगा तेरा पानी अमृत। अगले गीत आइए सुनते हैं वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ों में फिल्म गुड्डी से।

अभी आप सुन रहे थे वाणी जयराम और साथियों को फिल्म गुड्डी में। अगला गीत ये सुनते हैं लता मंगेशकर, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बैजू बावरा।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म बैजू बावरा की इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग।

0: लोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है। यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है। कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़,

0: भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: हाँ, सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर

पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के

0: पेड़ कट गए थे, इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी प्रवाहित हो गई है।
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
2: सारी फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
2: सारे
1: सामान धीरे जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोकगीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती।

0: जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं,
1: मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने
1: वाली बात नहीं है री। वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ ठीक है, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: नहीं गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।

0: न जाने कौन लोग हैं,
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
0: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो
2: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: राम,
2: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
0: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
2: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
0: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
3: मगर कैसे, भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
0: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
1: अच्छा।
0: वो रास्ता छोटा रहेगा।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: चलो
1: चलो ठीक है, जैसे पहुंच जाएंगे।
4: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ, हाँ,
0: बचाएंगी,
1: बचाएंगी। हाँ।
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: ठीक है।
0: अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
5: हाँ क्या बात है?
0: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल?
0: जल्दी आओ,
1: अरे समझ नहीं आ रहा।
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
6: बिल्कुल
0: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
1: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
0: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो।
7: आप
0: हम शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
6: अरे हाथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पेड़ों से अलग कर दो।
4: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
7: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
8: भाग ले, बाद में बाल काटने के।
4: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
9: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी चिपकी पेड़ से किसी ने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या बात है भाई, गौरा कमाल कर।
4: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
10: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
11: और विमलेश को
10: कुसुमलता,
11: जगबंधु,
10: चेतना
11: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार,
12: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी भजन।

मोहम्मद रफ़ी को भी आप सुन रहे थे फिल्म बैजू बावरा में, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। अगले गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मिस मैरी से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
6: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
7: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
7: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
7: गीतकार
6: और संगीतकार,
7: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
6: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
7: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
6: गाते गुनगुनाते
7: सुनिए सुबह 10:05 पर।
6: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
8: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
9: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
8: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ।
9: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
8: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
9: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। अगला गीत आइए सुनते हैं शर्मा बंधु की आवाज़ में फिल्म परिणय से।

0: इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी भजन। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
0: सुगम संगीत में आ जाइए, सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की गाई गए कुछ भजन।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से

05386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में ये भजन। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप लखनऊ से सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: से बोल रहे हैं, दिन के 1:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लखनऊ के रुकने पार्लियामेंट ने आज लखनऊ के केजीएमयू के 22वें यौम तासीस प्रोग्राम को खिताब किया। वजीर दिफा ने कहा कि केजीएमयू ने मुल्क को ऐसे डॉक्टर्स दिए हैं जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और डॉक्टर बीसी राय जैसे एजाज से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि आज डिग्री हासिल करने वाले तलबा एक मुस्तहकम रवायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। बाकी तफसील हमारे नामानिगार से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब बनने वाले 4 लेन के फ्लाईओवर का भी आज संग बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत हिंद ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर आज कौमी शोक का ऐलान किया है। इस दौरान मुल्क भर में उन तमाम इमारतों पर कौमी परचम आधा लहराएगा जहां कौमी परचम बाकायदगी से लहराया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि वो एक विजनरी रहनुमा थे। उन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो के महाना रेडियो प्रोग्राम

0: गया है। यह स्कीम 6 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुस्तफीन को फायदा हासिल करने के लिए मुतालका इलाकाई दफ्तर में ईमेल के जरिए दरखास्त भेजनी होगी। राम मंदिर पेशकश घोटाला की तहकीकात तेज हो गई है। खसूसी तफ्तीशी टीम धर्मसेना के सदर और बाबरी मस्जिद इंदाम केस के मुजरिम संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की गई। इस मौके के लिए उन्होंने सीओ सिटी के लिए दफ्तर बुलाया गया। पूछगछ के दौरान एसआईटी ने उनके इल्जाम और दस्तयाब हकायक की तफसील से जांच की। संतोष दुबे ने बताया कि एसआईटी ने उनसे कुछ दस्तावेजात की दरखास्त की थी, जिन्हें वो आज दोपहर 12 बजे सीओ सिटी ऑफिस के जरिए एसआईटी को फराहम करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया कि योगी आदित्यनाथ की क्यादत में राम मंदिर से मुतालिक किसी भी मामले में इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला के नोटिस लेने के बाद अब उन्हें यकीन है कि एसआईटी की तहकीकात असल मुजरिमों तक पहुंचेगी और पूरे मामले को बेनकाब करेगी। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में तमाम 8 मुलजमीन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ के मौसमियाती मरकज के माहिर मौसमियात मोहम्मद दानिश ने बताया कि तराई इलाकों और पूर्वांचल इलाके कई अजला में 3 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने की तवक्को है।
2: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर यह सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
0: दरियास्ता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों के सतहआब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम नारी जगत।
5: नारी जगत सुनने वाली सभी बहनों को रंजना का नमस्कार। बहनों, बारिश का सुहाना मौसम और आप, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का सबसे प्यारा उपहार हो, है ना? भीगी हवा, ठंडी बूंदे और गर्मा गर्म चाय पकौड़े। पर भाई, ये सब तो मानसून के शुरुआत में ही अच्छा लगता है। उसके बाद तो बहनों, ये मानसून बढ़ती उमस और नमी के साथ बहुत सारी समस्याओं का दस्तक दे जाता है। फिर चाहे वो वायरल फीवर, सर्दी जुकाम हो या त्वचा संबंधी समस्याएं। तो बहनों, इसके लिए बस थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना, खाने पीने की चीज़ों से लेकर किचन और बाथरूम को भी साफ सुथरा रखना और सूखा रखना, ताकि यहाँ बैक्टीरिया ना पनपें। और बहनों, अक्सर घर से बाहर निकलने पर हल्की फुल्की बारिश में बच्चे बड़े सभी भीग जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई तो ये सोचकर कपड़े चेंज नहीं करते हैं कि बस अभी थोड़ी देर में ये सब सूख जाएंगे, जबकि यही लापरवाही परेशानी दे जाती है। कभी फ्लू तो कभी त्वचा के लिए फंगल इन्फेक्शन। इसलिए भाई, हमेशा कोशिश करें कि कपड़े बिल्कुल ड्राई हों। और बहनों, इस मौसम में केवल उमस से भी बाल हमेशा भीगे से रहते हैं, तो भाई इन्हें हमेशा पंखे में सुखाते रहिए, नहीं तो ये सिर में खुजली भी करेंगे और डैंड्रफ की भी समस्याएं आ सकती हैं। और बहनों, इस मौसम में ज़रूरी है कि हम बाहर का खाना खाने से बचें और घर में ताज़ा बना भोजन ही करें। बच्चों को भी घर में तरह तरह के स्नैक्स बना कर दें, ताकि वो बाहर का खाने का डिमांड जो है वो बिल्कुल भी ना करें। और बहनों, बारिश का मौसम और मच्छर, ये तो आम बात है, तो भाई इससे बचने के लिए उपाय करें। फुल स्लीव के कपड़े पहने, बच्चों को भी पहनाएं और रात में मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। इस मौसम में कपड़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा फैब्रिक कॉटन माना जाता है, जो कि हवादार भी होते हैं और बहनों अक्सर हम यही सोचते हैं कि बादल होने पर सूरज

की किरणें त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि इस मौसम में भी सूरज की यूवी रेज त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इस मौसम में भी सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। इस मौसम में ज़रूरी है कि भाई शरीर में पानी की कमी भी ना हो, इसलिए नियमित रूप से पानी, शिकंजी सब पीते रहिए। मैंने अब बात करते हैं त्वचा की देखभाल की, तो भाई दिन में 2-4 बार नीम या एलोवेरा वाले हल्के फेस वॉश से चेहरा धोते रहिए, इससे पसीना और धूल साफ हो जाता है और चेहरा सूखा होता है। और बहनों मानसून के इस मौसम में भारी मेकअप से भी बचना होगा, क्योंकि भाई ये पसीने के साथ मिलकर त्वचा के जो पोर्स होते हैं ना उन्हें बंद कर देते हैं, इसलिए इस मौसम में कोशिश करें लाइट मेकअप करने की। तो भाई इस तरह से बहनों आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस मौसम का भी भरपूर आनंद उठा सकती हैं। बहनों कभी कभी क्या होता है ना कि लगता है कि बस बादल आ रहे हैं बरसेंगे, लेकिन इंतज़ार करते करते ना वो बादल उड़ जाते हैं और फिर धूप निकल आती है। बस यही इंतज़ार रहता है कि कब ये बादल बरसें।

मैनो, इस गीत के बाद बात करते हैं मानसून में घरेलू उपाय से बालों और त्वचा की देखभाल की। तो मैनो, सबसे पहले चेहरे की बात करें तो बारिश में ज़रूरी है कि त्वचा सूखी रहे। इसके लिए आप घर पर बने मुल्तानी मिट्टी को के फेस पैक को लगा सकती हैं। ये त्वचा का एक्स्ट्रा ऑयल सोखता है और आपकी त्वचा सूखी बनती है। और बहनों, अक्सर बरसात में फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा होती हैं, इसके लिए आप शहद में नींबू का पेस्ट लगा सकती हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल पैक का काम करता है। और बहनों, दिन में दो बार कम से कम चेहरे को साफ ज़रूर करें। इसके लिए आप कोई भी लाइट फेस वॉश को यूज़ कर सकती हैं। और अब बात बालों की करें तो मैनों, बारिश का पानी बालों को कमज़ोर करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर बाल भीग जाएं तो उन्हें तुरंत सादे पानी से धो लें और इन्हें तुरंत सुखा भी लें, क्योंकि जो गीले बाल होते हैं और उन्हें हम बांध लेते हैं ना, तो इससे बाल जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और टूटते भी हैं। और मैनों, मानसून में बालों की जड़ों में फंगस या रूसी हो जाते हैं, इससे बचने के लिए एलोवेरा जेल लगाइए, ये स्कैल्प को साफ़ करते हैं। और मैनों, बालों के लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार हल्के गुनगुने तेल से सिर की मालिश करें। इसके लिए नारियल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। और इस मौसम में हफ्ते में दो बार बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धोकर कंडीशनर लगाएं, जो कि बालों की नमी और पोषण देता है। और मैनों, बालों के लिए साफ़ तौलिया ही इस्तेमाल करिए, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन ना हो। और बहनों, इस मौसम में लगभग बाल हमेशा नमी उसमें होती है और पसीने से भीगे ही रहते हैं। इसके लिए बाल देर तक बांधे ना रहिए, इन्हें खोलकर सुखाते रहिए। और बारिश के मौसम में रसोई में मौजूद कुछ चीज़ों से भी हम बालों की देखभाल कर सकते हैं बहनों। इसके लिए आप प्याज या नारियल के तेल से प्री वॉश ऑयलिंग कर सकती हैं बालों की। बाल धोने के करीब एक घंटे पहले इस तेल को हल्की मात्रा में लगाइए, ये बालों में एक सेफ लेयर तैयार करता है और शैम्पू से होने वाली नमी को कम करता है। और बहनों, मानसून में बालों के लिए दही या एलोवेरा का हेयर मास्क बहुत फ़ायदेमंद होता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड सिर की त्वचा से डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करते हैं और फंगल इन्फेक्शन को कम करते हैं। एलोवेरा सिर की त्वचा को ठंडक दे,

है और पीएच संतुलन बनाए रखता है। तो इसके लिए दही और एलोवेरा जेल को बराबर मात्रा में मिलाकर लगभग 30 मिनट के लिए बालों पर लगाइए और उसके बाद इसे किसी माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। तो बहनों, इस तरह से मानसून में भी आपके बाल हमेशा की तरह होंगे चमकदार। तो अपनी बातों को अभी हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं बहनों ये गीत।

मैनू इस गीत के बाद अब चलते हैं खान पान की ओर, क्योंकि चाहे त्वचा की देखभाल हो या हेयर केयर, इसके उपाय सिर्फ बाहरी नहीं होते बल्कि इन्हें मजबूती अंदर से मिलती है। इसलिए अपने खान पान का रखें ध्यान और प्रोटीन से भरपूर आहार लें, जैसे दाल, पनीर, दही, मूंगफली। बाल केराटिन प्रोटीन से बनते हैं और इसके लिए आहार में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। मैनू भाई, एक आदत जो हम सभी में लगभग होती है वो है चिंता करना, तनाव लेना, जिसका असर बालों पर भी पड़ता है। तो भाई, बेवजह की चिंताओं को छोड़कर खुश रहिए। इसके लिए आप चाहें तो योग, प्राणायाम, वॉक या किसी और एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं। बहनों, मौसम चाहे कोई भी हो, आपके लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ये नींद आपके पूरे शरीर की सेल रिपेयरिंग का काम करती है और इसका असर बालों पर भी पड़ता है। और बहनों, अब बात करते हैं चेहरे के लिए मानसून स्पेशल फेस पैक की। तो मैंने इसके लिए बेसन और गुलाब जल का पैक लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर इसे सादे पानी से धो लीजिए। इस पैक से चेहरे का चिपचिपापन दूर होता है और चेहरा साफ हो जाता है। और बहनों, मानसून में नीम की पत्तियों को पीस कर उसमें थोड़ा सा शहद डालकर 10 मिनट के लिए आप लगा दीजिए चेहरे पर, फिर इसे धो लीजिए। इस पैक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि चेहरे को मुहासे से बचाते हैं। तो बहनों, इस तरह से खुद का रखिए खास ख्याल, क्योंकि हर साल आने वाला ये मानसून भी तो है ख़ास आपके लिए, क्योंकि बारिश के बाद आपका दिल बस यही कहता है कि तपती धूप और गर्मी से मिलती है राहत आज। बूंदों के इस संगीत में छिपा है कोई अनकहा राज़।

मैनो, मानसून के इस बदलते मौसम में स्वास्थ्य का क्या खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही कभी-कभी अधिक समस्या दे जाती है। जैसे कि बहुत गर्मी में सभी की आदत हो जाती है ठंडा पानी पीने की और खाने की भी, जबकि मानसून में बहुत ज़्यादा ठंडा खाना पीना नुकसानदेह होता है। अक्सर बाहर से आने के बाद बच्चे भी फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, जिससे गले में खराश और सर्दी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और बहनों, मानसून में अपने इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए हल्दी वाला दूध, लहसुन का सेवन, नींबू और तुलसी के पत्ते से बने काढ़े का इस्तेमाल ज़रूर करिए। इस मौसम में नमी होने के कारण पका और बचा हुआ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है बहनों, इसलिए भोजन थोड़ा ही पकाएं जितनी आवश्यकता हो, यानी बासी खाने से बचें। तो बहनों, बस हो जाइए तैयार, क्योंकि बारिश का मौसम है, संग हैं आप, चाय की प्याली है, कुछ पकौड़े हैं साथ। भाई, बारिश की बूंदों की ठंडी फुहारें और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को तरोताज़ा कर देती हैं, तो फिर देर किस बात की। आप भी बैठ जाइए बालकनी या खिड़की के पास और आनंद उठाइए इस बरसात का। बहनों, ठंडी हवा का झोंका और ये पानी की फुहार, प्रकृति ने जैसे खुद ही सजा दिया है संसार। और ऐसे में आपका पसंदीदा संगीत जो है ना, आपको बहुत सुकून देता है, जैसे कि ये गीत।

0: बैनो, इस गीत के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में बहुत सारी बातों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को रंजना का नमस्कार।
1: बहनें अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी नारी जगत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से विनय कुमार की बातचीत, आम की विदेशी और रंगीन प्रजातियों की बागवानी से लाभ।
1: बागवानी में सैगर आमदनी बा, एकर उत्पाद भी बाजार में खरीदार बहुत हुआ। और तो और अगर उच्च गुणवत्ता युक्त फल उत्पादन आप करत नहीं तो एकर गहकी विदेश में भी बाना काफी मांग है। लेकिन सोचे के ई बा कि कौन कौन ऐसन फल हुआ जेकर विदेश में मांग बा, वो फल का विशेषता का होके की चाहिए, वो फल वाला पौधा का उपलब्धता कहाँ से प्राप्त हो सकेला। लेकिन आप लोगन के चिंता कैला का बात नहीं बा। आज हम फोन लाइन से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह डिप्टी डायरेक्टर औद्यानिक फल शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती से टेलीफोन द्वारा बातचीत करत है कि आम का जवन रंगीन और विदेशी प्रजाति है उनका विशेषता का है, उनके लगावला से फायदा कितना मिल सकेला। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका फोन लाइन से जुड़ला खातिर धन्यवाद बा। आप हमारे बागवान भाई के बताई
2: आम की रंगीन प्रजातियों की आवश्यकता क्या है, तो इसमें हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि आम तौर पे जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ सफेदा और पूर्वांचल में खास करके गौरजीत प्रजाति, इनको हम परंपरागत रूप से किसान भाई लगा रहे हैं। इनमें कुछ समस्याएं आती है कि गौरजीत जैसे अगेती फसल है, शुरुआत में आ जाती है और जल्दी ही खत्म हो जाती है। पैसा तो अच्छा मिलता है लेकिन इसकी बहुत दिन तक रखने की गुणवत्ता नहीं है, बहुत दिन तक हम कमरे के टेम्परेचर पे रख नहीं सकते हैं, इसलिए बाहर भेज करके विदेश भेज करके पैसा कमाना इस प्रजाति से संभव नहीं है। यही हाल होता है दशहरी और लंगड़ा में जो एक निर्धारित समय के लिए आती हैं 10-15 दिन के लिए, और आम का उस समय पीक होता है पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत आम बहुतायत में होता है, एक साथ पकता है, दशहरी का नवरोजा कहलाता है और अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। दशहरी प्रजाति में भी यही हाल है, लखनऊ सफेदा में यही हाल है, इसको हम पकने के बहुत दिन बाद तक घर पे रख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अब किसान भाइयों की मजबूरी है कि ऐसी प्रजातियों का चयन करें, नए बाग लगाने जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो, बाजार में एक्सपोर्ट क्वालिटी, विदेशों में उनकी अच्छी मांग हो और स्वाद अच्छा हो, इसके साथ ही साथ उसको ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता हो। तो इसके लिए तमाम सारी नई प्रजातियां जो रंगीन किस्म की हैं, आकर्षक हैं, बड़े बड़े अच्छे माल में रख करके बेची जा सकती हैं, अच्छा पैसा मिलेगा, या विदेशों को भेजी जा सकती हैं जो उनको रखने की क्षमता अच्छी होती है। तो इसमें कुछ प्रजातियां जैसे पूसा श्रेष्ठा है, अनामिका है, अरुणिमा है, इसी तरह से हमारी जो यहाँ की प्रजातियां हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में है उसकी एक प्रजाति

0: प्रजाति है अंबिका और अरुणिका, पूसा सूर्या दिल्ली की प्रजाति है। इसके अलावा दो विदेशी प्रजातियां हैं, टामी अटकिन और सनसेशन। इनकी भी खेती किसान भाई आराम से अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की दशा में कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ये चूंकि ड्वार्फ नेचर की छोटे बौने आकार की होती है, इसलिए इनको 10-10 मीटर की पुरानी दूरी पे न लगा करके 5-5 मीटर पे या 5 से 6 मीटर की दूरी पे लगाना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे आएंगे और कटाई छटाई करके नियमित कटाई छटाई करती रहें तो उनका आकार भी छोटा बनाए रखेंगे, जिससे कि सारे ऑपरेशन दवा डालना है या और कोई आम में फल में कवर चढ़ाना है बरसात से बचाने के लिए, फल मक्खी से बचाने के लिए, तो इसके लिए जरूरी है पौधा बहुत बड़ा 30-40 फीट ना हो करके 7 फीट 8 फीट 9 फीट हो, अधिकतम 10 फीट तक हो। तो ये सारे काम आराम से किए जा सकते हैं और गुणवत्ता नियंत्रित होगी।
1: डॉक्टर साहब, ये जितना आप प्रजात बताओ तनी, एकर
0: जी,
1: पौधा कैसे मिली?
0: सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में बस्ती जनपद में इजराइल सरकार के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। आम उत्कृष्टता केंद्र है, केवल आम के ही पौधे, इन विदेशी किस्मों के और जो अच्छी वाली किस्में हैं, नई प्रजातियां हैं, उनके पौधे बनाए जा रहे हैं और कीमत एकदम वाजिब रखी गई है, 50 रुपए प्रति पौधा कीमत है इसकी। जो और जो पुरानी प्रजातियां हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ सफेदा, रामकेला, गौरजीत, इनकी कीमत 50 रुपए है और बाकी रंगीन प्रजातियों की कीमत 55 रुपए प्रति पौधा की दर से है। जो किसान भाई मध्य उत्तर प्रदेश से हैं, बीच की जो उत्तर प्रदेश है वहां से हमारा सेंटर है आम पौध उत्पादन का मलिहाबाद में, वहां से अच्छी प्रजाति के इन्हीं प्रजातियों के पौधे ले सकते हैं। जो किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, वो हमारा एक सेंटर है सहारनपुर में, वहां से इन अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रजातियों के पौधे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे हर जिले में जिला मुख्यालय पर करीब करीब अच्छी नर्सरियां हैं हमारे विभाग की, उद्यान विभाग की, वहां से जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके और वहां की पौधशालाओं से गुणवत्ता युक्त अच्छे पौधे ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पौधा खरीदत समय कौन बात है जौना के सावधानी से ध्यान पूर्वक देख के ही पौधा खरीदे ताकि पौधा मरे ना?
0: सबसे बड़ी चीज यही है कि हमको किसान भाइयों को पौधा हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी पौधशाला से नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकारी पौधशाला या भारत सरकार की सरकारी पौधशाला या कृषि विज्ञान केंद्र की कोई पौधशाला है उससे ही लेना चाहिए। अब उससे गारंटी ये रहेगी कि प्रजाति की गारंटी रहती है, मदर पौधे का सिलेक्शन वहां पर उसके फल आकार गुण स्वाद सभी को देख करके किया जाता है, तभी उससे पौधे तैयार किए जाते हैं। एक तो ये गारंटी कर लें कि हम अच्छे स्रोत से लें, प्राइवेट हाथों में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। जो पंजीकृत अच्छी नर्सरियां हैं, निजी पौधशालाएं, वहां से ले सकते हैं, लेकिन वैरायटी प्रजाति की संतुष्टि के बाद अच्छी तरह से प्रमाणिकता हो जाए तभी वहां से लें। और जो पौधे हम लोग बस्ती सेंटर में, मलिहाबाद सेंटर में, सहारनपुर सेंटर में, उद्यान विभाग में तैयार कर रहे हैं, उन पौधों की मिट्टी जो पॉलीथीन बैग में तैयार करते हैं और एक बैलेंस मात्रा में उसमें पोषक तत्व देते हैं, लगातार सिंचाई भी उतनी ही देते हैं जितनी चाहिए होती है, तो उसमें करीब 5 से 7 किलो तक मिट्टी रहती है। पहले वाली पिंडी नहीं रही, 1 किलो आधा किलो वाली नहीं, 5 से 7 किलो मिट्टी वाली पिंडी जो पौधा दिया जाता है हमारा तैयार करके बस्ती सेंटर से, वो पौधा 100% चलता है, उसमें कोई भी मरने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी किसान भाइयों को चाहिए कि जब पौधा ले जाएं तो सावधानी पूर्वक ले जाएं, उसको पिंडी टूटने न पाए, ऐसे कायदे से लेकर के रखें, और चूंकि दूरी से आप ले जाते हैं तो छाया में रख दें और उसमें पानी डाल दें। पौधा जाते समय वाहन में उसमें टक्कर आता है तो मिट्टी में हिलने डुलने की चांस रहता है, जब मिट्टी हिलती है तो पिंडी के अंदर हवा जाने की गुंजाइश रहती है, और जैसे ही हवा उसमें जाएगी जड़ों के पास में तो पौधा सूखने का डर रहता है, नंबर एक। नंबर दो, जब पौधा लगाते हैं उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि पिंडी टूटने न पाए, आराम से ब्लेड से काट करके उसको पन्नी को हटा दें और तब पौधे को लगाएं, तो पौधा मरेगा कतई नहीं।
1: पूर्वांचल में जितना भी आम का बागवानी है ओमे खास तौर से आम का गुम्मा रोग या यह तरह से कुछ बीमारी है जो उनकी पूरा बाग खराब कर देली, तो यह कुल प्रजातियन में का यह रोग से बचाव है या इमें भी लगेला या कैसे एकर जानकारी करे के पड़ी?
0: कुछ प्रजातियां हैं जिनमें गुम्मा रोग शुरुआत में लगता है, जैसे आम्रपाली प्रजाति है जो पूर्वांचल में पहले लगाई गई है, तो शुरुआत में 5 से 7 साल तक इसमें दिक्कत रहती है, ऐसा दिखता है छोटा बहुत गुम्मा,

0: Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for six against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे

0: वेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे लिए नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा,

0: गाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी को नेपाली प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। रामायण पाठ

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 4 बज रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। हमारे विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे।
1: कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
2: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं। तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
1: पुरानी यादें ताजा हो रही है
2: जी।
1: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज़, यही आप लोगों की आवाज़ और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है। और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
2: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
1: राइट। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
2: जी।
1: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
2: जी।
1: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
2: जी।
1: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
2: जी।
1: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
2: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?

0: राइट सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, यह गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते
1: जी
0: हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है, लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन
1: जी
0: इंफॉर्मेशन होना महत्व का है,
1: हाँ
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा, ये बात सही नहीं है।
1: जी
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली, उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट,
1: जी
0: जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा, ये गलत बात है और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: पहली बात मैंने बताया, ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।
1: जी
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं,
1: जी
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है,
1: जी
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है।
1: जी जी
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं,
1: जी
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
1: जी
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही, ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं,
1: जी
0: जैसे डायबिटीज,
1: यस
0: जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है,
1: ओ
0: न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज
1: ओ
0: जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है,
1: जी
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं,
1: जी
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि प्रोस्टेट के कारण है
1: जी
0: या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को,
1: जी जी
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं,
1: जी
0: ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है,
1: नो
0: यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व

0: टेस्ट है जिसे हम पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, ये ब्लड टेस्ट है।
1: जी
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या पीएसए का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है।
1: जी
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार पीएसए का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है।
1: जी
0: पीएसए बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी
1: जी
0: प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर पीएसए का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं।
1: जी
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी
0: है।
1: जी
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं,
1: जी जी
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं।
1: जी
0: इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना
1: जी बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं, तो बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर। इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है
1: क्या बात है,
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती
1: बिल्कुल
0: है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह
1: क्या
0: हाथ।
1: बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना, या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाइर रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रेज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके ये कोशिश रहती है।
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
0: जी, जी।
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी उसका प्रचार हो रहा है।
0: जी, जी।
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट

0: क्वाइट ऑल राइट. जो
1: जी
0: स्टैंडर्ड ऑपरेशंस है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है
1: जी
0: और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है.
1: जी जी
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं।
0: ओ
1: कौन सा
0: जरूर,
1: गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की
0: किशोर
1: आवाज।
0: कुमार की आवाज, क्या गाना है.
1: जी सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का

0: स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है. सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है. सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है.
0: जी, जी.
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
0: जी.
1: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं. सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है.
0: जी.
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है.
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर
0: है. तो
1: जरूर.
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है. स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर. कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है. सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा. सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं.
0: जी जी. यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए.
0: जी, जी.
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की. सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है. लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है. जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है.
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा.
1: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है.
0: जी.
1: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है.
0: जी. और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
1: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं.
0: जी हाँ.
1: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं. सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है.
0: जी जी.
1: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है.
0: जी. तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
1: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है.
0: जी.
1: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या, बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है. आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि

0: कहाँ मुझे सुविधा मिलेगी, कहाँ मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज़्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या आने
1: जी
0: शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है।
1: जी
0: सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है।
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े
0: दैट्स
1: हुए
0: राइट,
1: हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा गाना?
0: जरूर एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम
1: तुम
0: रहती
1: रहती
0: हो,
1: हो, ब्लैक पेन फिल्म का
0: काफी
1: गाना।
0: यहाँ
1: जी
0: जी रोमांचिक गाना है,
1: जी जी
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे,
0: हाँ जी,
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे।
1: जी
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग
1: हाँ
0: कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है,
1: जी जी
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरापी भी देते हैं, सो
1: जी
0: म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
1: जी जी
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में
1: बंद हो जाएगा।
0: सोचेंगे
1: जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।
0: नहीं।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेज है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी,
1: तो ये सब चीज

0: ये एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते, कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए। लेकिन ये गलत बात है,
1: जी
0: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
1: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
0: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं।
1: जी
0: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है। और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है, तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है। फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है।
1: जी
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है, तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल।
1: जी
0: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए।
1: जी
0: और फोर्थ, इन्फेक्शन, विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये कॉमन कारण है।
1: जी
0: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है, और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो, जैसे मैंने बताया, कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए। सच बात है, पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है, तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है, उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है।
1: ओ
0: और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स, ताकि
1: जी
0: वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें।
1: जी
0: लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में। और दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए? क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में, पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके
0: दैट्स
1: बारे में
0: राइट।
1: थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है,
1: जी
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है।
1: जी
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है, उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है।
1: जी
0: सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस
1: लक्षण
0: कम
1: है।
0: हो जाए, वो पहले कोशिश करनी है।
1: जी
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है। और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है, क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है। कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं, ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, यहां पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर,
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है, बहुत अच्छा गाना है और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा।
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।
2: झूठ

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज़्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है।
0: हुँ.
1: क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
0: जी।
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है
0: जी।
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है। सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
0: जी, इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल।
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल,
1: ये भी होना नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जाँच जरूर करवाएं।
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे
0: शर्म
1: के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर। लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता लेकिन

0: एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं
1: ओके
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है
1: ओहो
0: ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए। इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
1: ओ
0: इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या
1: जी
0: जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए।
1: जी
0: ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
2: जी दोस्तों, सेहत नामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: नमस्कार, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लादिस्लाव बार्तोसिदेस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फू क्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, आइए सुनते हैं ये वाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: फ्रिज

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए क्योंकि मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शिवांश लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस मौसम का आनंद ले रहे होंगे। हल्की हल्की बारिश, फिर हल्का हल्का धूप, गजब का मौसम हो रहा है। नहीं, इस मौसम का आनंद लेते रहिए। और चलिए हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं। दोस्तों, असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। अर्थात दोस्तों, जीवन में असफल होना हार मान लेना नहीं है। असफलता हमें अपनी कमियों को पहचानने, उससे सीखने और पहले से बेहतर प्रयास करने का अवसर देती है। जो लोग असफलता से सीखकर दोबारा मेहनत करते हैं वही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप लोग कभी भी अपने हार से हारिए मत, अपनी की गई गलतियों से सीख लीजिए और अपने लक्ष्य के लिए फिर से प्रयास करिए और आप देखिएगा कि आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाइएगा। दोस्तों, लक्ष्य से एक बात मुझे याद आई कि आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन में लगभग हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना रहा है। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर इंटरनेट का हम सही उपयोग करें तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह सीखने, आगे बढ़ने और नए अवसरों को पहचानने का एक शक्तिशाली साधन भी है। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से नई नई तकनीक सीख सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है, साथ ही साथ विदेशी भाषाएं सीख सकता है और अपने कौशल का विकास कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से युवा अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन ट्यूशन के साथ साथ ई कॉमर्स जैसे अनेक क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का भी एक आसान माध्यम होता है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरना, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, डिजिटल भुगतान करना और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं आज इंटरनेट के माध्यम से ही सरल हो पाई हैं। इससे समय भी बचता है और संसाधन दोनों की बचत होती है। दोस्तों, इंटरनेट जितना उपयोगी है उतना ही सावधानी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता भी है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, फर्जी समाचार, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी होती है और समय की बर्बादी जैसी कई समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें इंटरनेट का उपयोग सोच समझकर और अपनी सुविधा अनुसार ही करना चाहिए। किसी भी जानकारी का पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जान लें। अपने व्यक्तिगत जानकारी और पासवर्ड किसी से भी साझा ना करें। साथ ही साथ किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और उससे बचें और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। दोस्तों, विशेष रूप से युवाओं को चाहिए कि वे इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजक तक सीमित ना रखें बल्कि उसे ज्ञान, अपने कौशल को बढ़ाने और आत्मविकास का माध्यम भी बनाएं। प्रतिदिन कुछ समय नई चीज़ें सीखने और प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने और अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करें। तो इसीलिए इंटरनेट का सही प्रयोग बदल सकता है आपकी भविष्य। आइए, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत, आइए पुनः चलते हैं बातचीत की दुनिया में। दोस्तों स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव यदि किसी चीज़ पर टिकी है तो वो है पौष्टिक आहार। हमारे बुज़ुर्गों ने भी ठीक ही कहा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और साथ ही साथ वैसा ही होता है तन। अर्थात दोस्तों हमारा भोजन ही हमारे स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इसीलिए आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि पौष्टिक आहार होता है जीवन का आधार। दोस्तों पौष्टिक आहार वह जीवन है, वह भोजन है जिससे

0: तथा जंक फूड पर आधारित हैं और उसका अधिक सेवन करने लगे हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन इनमें आवश्यक पोषक तत्व की बहुत कमी होती है। इनका जो अधिक सेवन करते हैं उनमें मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के साथ साथ अन्य अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उनके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें ताज़ा, स्वच्छ और संतुलित भोजन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। एक संतुलित भोजन में दालें, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मौसमी फल खाइए, दूध और दुग्ध उत्पाद के साथ साथ साबुत अनाज और अंकुरित अनाज और पर्याप्त मात्रा में इसके साथ पानी ज़रूर लीजिए। दोस्तों, बच्चों के अंदर चाहे किशोर हों या गर्भवती महिलाएं हों और या बुज़ुर्ग हों, उन सभी के लिए पौष्टिक आहार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये उनके शरीर को शारीरिक और मानसिक विकास में बढ़ोतरी में बहुत ही महत्व मदद करता है। दोस्तों, केवल अच्छा भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर भोजन करना, भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाना और नियमित व्यायाम इसके साथ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम संतुलित आहार के साथ साथ योग, व्यायाम और पर्याप्त नींद लें और इनको अपने दिनचर्या में शामिल करें, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन भी जी सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ शरीर की सफलता और खुशहाल जीवन की सबसे पहली शर्त यही है कि हम पौष्टिक आहार खाएं। तो चलिए, आज हम यह संकल्प लें कि जंक फूड की अपेक्षा करेंगे, पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन को अपने जीवन में अपनाएंगे, साथ ही साथ अपने परिवार और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि सच ही कहा गया है, पौष्टिक आहार ही होता है जीवन का असली आधार। आइनी बातों के साथ चलते हैं इस गीत की ओर।
1: हाँ, उल्लू का पट्टा बोली।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: दोस्तों, इस अंतराल के बाद आइए पुनः चलते हैं बातचीत की तरफ। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक व्यक्ति या परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और वो विषय है दोस्तों, युवाओं में बढ़ते नशे की लत। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिभा और मेहनत देश के विकास की आधारशिला होती है। लेकिन जब यही युवा नशे जैसे बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं तो उनका भविष्य ही नहीं बल्कि समाज का वर्तमान और देश का आने वाला कल भी प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, ई सिगरेट और विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन युवाओं के बीच तेज़ी से बढ़ रहा है। कई बार इसकी शुरुआत केवल शौक से होती है, कभी कभी दोस्तों के दबाव से, दिखावे से तथा कभी कभी तनाव से भी होती है। कुछ युवा यह सोचकर नशे की ओर कदम बढ़ा देते हैं कि इससे तनाव कम होगा या वे अधिक आधुनिक और आत्मविश्वासी दिखाई देंगे। लेकिन धीरे धीरे यही आदत एक ऐसी लत बन जाती है जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों, नशे का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही मानसिक तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। पढ़ाई भी प्रभावित होती है, करियर रुक जाता है और परिवार के साथ संबंध भी कमज़ोर पड़ने लगता है। दोस्तों, कई बार नशे की लत अपराध, हिंसा और सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बन जाती है। इसका समाधान अगर हम सोचें तो इस समस्या का समाधान केवल कानून से संभव नहीं है। इसके लिए परिवार, विद्यालय, समाज और स्वयं युवाओं को मिलकर प्रयास करना होगा। माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, विद्यालयों में नशे के दुष्प्रभाव के बारे में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करनी चाहिए। युवाओं को खेल, योग, संगीत, साहित्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना भी बहुत ही आवश्यक होता है ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लगे। दोस्तों, यदि किसी युवा को नशे की आदत लग चुकी है तो उसे अपराधी नहीं बल्कि सहायता और सहयोग की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। समय पर उचित परामर्श, चिकित्सा और परिवार का सहयोग उसे सामान्य जीवन की ओर वापस ला सकता है। इसीलिए दोस्तों, चलिए आज के दिन हम यह संकल्प लें कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार के साथ साथ मित्रों और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। एक स्वस्थ, शिक्षित और नशा मुक्त युवा ही एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकता है। आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत। दोस्तों, एक बात आपसे ये कहनी है कि इस समय मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, तो आप गाड़ी बहुत आराम से चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बारिश में अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट लग सकती है और आपको कुछ हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए और आइए सुनते हैं फिर से ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आपको तो पता है मेरे पास बातें बहुत होती हैं करने को, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है, समय हो चुका है जाने का। जाने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको अगले दिन मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आज का प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारी वसु श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ईशोवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: घर आंगन सुनने वाले सब श्रोता बहन सबके मनीषा का नमस्ते। पहन देखा अपन बैठकी शुरू हो गई और हमने के बैठकी में कोनो न कोनो चर्चा तक करबे करी ला जा, और आज हमने के अपने बैठकी में चर्चा करे के दस्तक अभियान के बारे में। बहन ई अभियान हवे का एकरी बारे में भी
2: जिंदगी बहुत
1: जानकारी ले लें जा तो और भी बढ़िया रही। बहन दस्तक अभियान एगो योजना है सरकार द्वारा चलावल, जोन 2021 से शुरू कर गेल है। एकर मुख्य उद्देश्य हवे कि जैसे 5 साल से कम का जोन बच्चा बाणा सब बीमारी से चाहे कुपोषण से कोनो प्रकार से जोन बाणा सब ग्रसित बाणा सब, तो उनका इलाज अगर नहीं हो पावत रहे तो अब घर घर जाके आशा बहन लोग बा लोग और सब बाटे तो ए तरह से जानकारी दे लोग, अगर कोनो भी बच्चा में ए तरह का कमी पावल जाते तो ओके पुरहर इलाज मिली। तो एक कम उम्र के बच्चन के मृत्युदर और रुग्णता के दूर करे की खातिर आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण सेवा मन का एगो पैकेज हवे, जेमा दृष्टिकोण के रूप से अगर देखल जा तो दस्तक अभियान चलावल गइल बा। ई अभियान के न्यूट्रिशियन इंटरनेशनल द्वारा भी समर्थन कइल गइल बाटे, जवन की एगो वैश्विक पोषण संगठन हवे और जरूरतमंद लोगन के कम लागत और उच्च प्रभाव वाले पोषण देके प्रदान करेना और केंद्रित होला। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल सूचना शिक्षा और संचार सामग्री का नियोजन और रणनीति निर्माण अभिविन्यास निगरानी समीक्षा और विकास अभियान के समर्थन करेला। राज्य का स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में दस्तक अभियान चलावल गइल बा। एकर उद्देश्य हवे ANM आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की मदद से कुपोषित बच्चन के सक्रिय रूप से पहचान कैके इनका प्रबंधन कैके इलाज करावल जा। 5 साल से कम उम्र के बच्चन के आवश्यक स्वास्थ्य और कुपोषण सेवा प्रदान कइल जाए। 5 साल से कम उम्र के बच्चन जोन बाण तो ओकरी परिवार का पहचान करे की खातिर घरे घरे दस्तक देके और एकर जानकारी इकट्ठा करी लोग, जैसे गंभीर एनीमिया, गंभीर तेज बुखार, कुपोषण और COVID-19 जैसन बीमारी की खातिर सभी का जाँच करके और देखेला लोग कि बच्चा कोनो भी बीमारी से ग्रसित तो नहीं बा। अगर कोनो भी प्रकार का कुपोषण या बीमारी का पता चलेला और उनकरी उपचार का व्यवस्था ही लोग करेला। दस्तक अभियान के माध्यम से आगे पक्ति के कार्यकर्ता एनीमिया के रोकथाम की खातिर आयरन, फोलिस एसिड सिरप, डायरिया का प्रबंधन और ORS का घोल पैकेट में उपलब्ध करावेला और जिंक का गोली भी बांटल जाला, और ये बच्चन के विटामिन ए के खुराक भी प्रदान करेला। घर घर जाके बच्चन के परीक्षण कैके ओकर लक्षण मिले तो नजदीकी केंद्र पर ले जाके सब जांच भी करावेला लोग और पुरहर इलाज भी करावेला लोग। तब बहन एकर तो लाभ बाटे कि अगर ई घरे घरे जाके ऐसा होताटे तो बीमारी से बचावल जा सकेला। अपनी बैठकी में और भी बात करे के, लेकिन ओकरी पहले तनी मन मनसाइन खातिर सुन लिया जाएगो गीत।

0: हाँ बहन देखा, मन मन शांत तो भइल। अब अपनी बैठकी के आगे बढ़ाओल जा और सुन लेल जा भेंट वार्ता। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा क्यों जरूरी, डॉक्टर स्मिता सिंह से इनसे बातचीत करता रही रागिनी राय।
1: आज हमनी के घर आंगन कार्यक्रम में आयल बानी महिला महाविद्यालय बस्ती के सह आचार्य डॉक्टर स्मिता सिंह जी, आपका हमनी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम हनके एगो सबसे जरूरी विषय, ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा कितना जरूरी बा, यही विषय पर चर्चा कर जाए। ग्रामीण महिला बहन के शिक्षित भइल कितना जरूरी हवे?
2: देखी, जोन ग्रामीण महिला है हमरे अनुसार उनका पढ़ा लिखा उतना जरूरी बा जितना शहरी महिला का है। महिला जैसे चाहे ले वैसे पूरा घर चलावे ले। नेहरू जी कहले हमें कि एक पुरुष का शिक्षा एक घर का शिक्षा हो ले, लेकिन एक महिला की शिक्षा दोनों घर का शिक्षा हो ले। ऐसे ग्रामीण होके चाहे शहरी महिला होके पढ़ाई लिखाई उतना जरूरी बा जितना शहरी महिला का है।
1: हाँ, अगर ग्रामीण महिला में शिक्षा का स्थिति देखल जा तो उस शहरी महिला की अपेक्षा में कम होला, एकर का कारण है?
2: हाँ, ये बात सही बा। गांवन में आजो मानल जाला कि लड़की का मतलब है घर द्वार देखे ही है। शहर में ही है कि घर द्वार देखिए देखिए, लेकिन पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए।
1: हाँ।
2: लेकिन ये है कि गांवों की महिला अब चाहत आ रही कि अपने पैरों पर खड़ा हो खे।
1: हाँ।

0: हर चीज जाने है, समझे है, का जरूरी है का जरूरी ना है। आज इंटरनेट के दुनिया में गांवे ले कुल सुविधा पहुंच गई बा। ऐसे महिलाओं में ये बात तायल बा कि हाँ हमें पढ़े चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत चीज के जानकारी ना है कि हम कैसे आगे बढ़ी, का करी, हमें कब का करे है। कबो केहू कुछ बता दे तो करे लगे ने लोग, फिर
1: कहने
0: कुछ
1: का
0: बता
1: मतलब
0: दे।
1: कि अगर जो पढ़ल रही हैं तो जन आज इंटरनेट का दुनिया चल रहा बा, स्मार्टफोन चलावल भी उनके खातिर बहुत सारा आसान हो जाये, तो वजह से शिक्षित होकर बहुत जरूरी बा।
0: चलावक तो सब जानते बा, लेकिन ई नहीं जानता कि हमें देखे का है, ई नहीं जानता कि हमें देखे का है। आज यूट्यूब इतना प्रचलन हो गया बा, हमके ना लगे कि अपने हिंदुस्तान के बाहर कौन दूसर देश है जहाँ लोग इतना यूट्यूब देखा था।
1: अगर जो सामाजिक सशक्तिकरण खातिर देखल जाए तो ग्रामीण महिलाओं के शिक्षित होखल कितना जरूरी है।
0: देखिए सशक्तिकरण का मतलब सबके लिए अलग अलग पैमाना हो गया बा, केहू ओके रुपया पैसा से जांचेला, केहू ओकर दूसर पैमाना बनौले बा। हमरे दृष्टि से देखल जाए तो सशक्तिकरण खातिर सबसे ढेर जरूरी बात ये बा कि कौनो महिला होके वो अपन निर्णय ले सके कि हमें जौन करे के है तो उन करे के है, वो कितना सही बैठी कितना गलत बैठी वो तो भविष्य बताई। लेकिन देखल जाता कि कौनो न कौनो सामाजिक बाध्यता के कारण जिन्ना महिलाएं हैं वो कौनो निर्णय लेवे से तनी डरा ली
1: लेकिन
0: अपने
1: अगर जो पढ़ा लिखल महिला रही तो शायद वो अपन निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम हुई,
0: ये तो सीधी बात बात जे के जितना जानकारी रही ओकर निर्णय उतने ठीक
1: सही
0: बैठी।
1: गलत का निर्णय कर
0: हाँ
1: सका
0: ओकर
1: थी।
0: ओकर निर्णय उतने ठीक बैठी।
1: और एक बात और बात, जैसे लड़कन के पालन पोषण कैले में शहर में भी पालन पोषण में माता लोग करे ली, गांव में भी करे ली, तो अगर जो पढ़ल लिखल गांव का महिला है तो अपने लड़कन के पालन पोषण कैला में शिक्षा का जो भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाला।
0: देखिए ऐसा ना है बाकी ग्रामीण महिला अपने लेकर ठीक से नहीं पाला ताड़ी, कबो कबो देखे में आओ ताकि शहरी महिला से ढेर नी कुकुल पाला ताड़ी। बस समस्या ये बा कि वो ही ना जाना ताड़ी कि कौने चीजी में कितना न्यूट्रिशन चाहिए। लड़का तैसा बीमार भेल तब अब हूँ देखिए तो गाँव में कई तरह का घरेलू उपचार से वो ठीक कर ले, लेकिन जब लड़का तनको गड़बड़ा ला तब फिर ओ में वो ही नहीं जान पाले कि जैसे पहले होता रहा जब लड़का के बुखार पकड़ जाए तो के खूब बढ़िया गरम गरम चीज उड़ा देते रहने। आज डॉक्टर कहता ना ओके उड़ावक नहीं बा, पहले शरीर गरम बा और नहीं गरम करे बा, ओके ठंडा करे बा। गाँव में लड़का बा चाहे शहर में लड़का बा नया नया टेक्नोलॉजी का अपने हिसाब से प्रयोग करे लागे ला, तो जब महिला पढ़ल लिखल रही तो के पता चली कि हमारा लड़का का देखा था का पढ़ा था का करा था।
1: कल एक मतलब ये बा कि अगर जो पढ़ल लिखल महतारी रही तो लड़कियन के बीमार भइला पर पहले अस्पताल में दिखा के डॉक्टर से परामर्श लेके ही दवा दे। और सबसे बड़ी बात ये बा कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या से निपटे खातिन, जैसे महिलाएं हैं अगर जो उनके स्वास्थ्य संबंधी कोनो समस्या होता तो उनमें शिक्षित महिला जो नहीं ग्रामीण महिला अगर जो शिक्षित है ओकर का भूमिका हो सकत है।
0: देखिए ग्रामीण महिला पहले सोचे ले कि अब ठीक हो जाओ अब ठीक हो जाओ कुछ है कह ले कुछ हो कह ले, कबो कबो ऐसा करत करत करत करत वो अपने बीमारी के तनी से बहुत ढेर बढ़ा ले ली। ऐसे में शहरी महिला है तो अपने पढ़ल लिखल ही है तो तनको परेशानी होला तो यो सोच के डॉक्टर लगे चल जाली कि चल यही बहाने तनी से हम चल जाओ डॉक्टर साहब देख लिए कि कहीं ऐसा तो ना है कोनो नया बीमारी शुरू होता, तो ऐसे उनके तन बचाव में ज्यादा सुविधा हो जाला।
1: कहले के मतलब बा कि अगर पढ़ा लिखल भाई तो उनके ऐसे ज्यादा लाभ मिल सका, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक।
0: हाँ ज्यादा जागरूक रही है।
1: आज भी देखल जाला गांव में अगर जो लड़के बीमार पड़ जाना चाहे कि वो बार बार बीमार पड़ा था तो ओके दिखौले डॉक्टर के दिखौले के बजाय लोग झाड़ फूक टोना टोटका में ज्यादा विश्वास करेला। एक शिकार सबसे ज्यादा जन अनपढ़ महिला होली उस सबसे ज्यादा ओकर शिकार होली। एक नतीजा ही निकलेला कि वो कोनो बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम निकल जाला। ऐसा भी घटना सुने के मिलेला, तो अगर जो शिक्षित महिला तो क्या ऐसे ओके लाभ मिल सका था।
0: जरूर मिली। आज बार बार शिक्षा में बतावल जाला कि जितना तू चमत्कार देखत अड़ू एको चमत्कार नहीं है, ये सब विज्ञान है। विज्ञान का कोनो केमिकल होके डार देले पे लाल हो जाता पियर हो जाता बैगनी हो जाता, तो पढ़ल लिखल रही महिला तो जान जाए कि जौन झाड़ फूक कही के टोना टोटका कही के जौन है रंग बदल देता ना जो नया नया कार कराता ना, ये सब कोनो चमत्कार ना है, ये सब विज्ञान है। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई उनके खातिर बहुत ज्यादा जरूरी बा।
1: आजकल सरकार जौन है कई तरीके का योजना चला रही है जैसे महिला ग्रामीण महिलाएं कौशल सीख के भी योजना का लाभ उठा सकत है, तो क्या अगर जो शिक्षित अगर जो महिला है तो क्या ये योजना का वो ज्यादा लाभ उठा सकत है।
0: जरूर उठा सकत है। ग्रामीण महिलाएं जनते ना है कि आज कितना सरकारी योजना चलता। आज महिलाओं खातिर खाली वो दो योजना जाने ली कि विधवा पेंशन जाना ताड़ी कि 60 साल से ऊपर वाले के वृद्धा पेंशन जाना ताड़ी, वो नहीं जान रही है कि हमरे अगर कौनो कौशल होके तो वो कौशल के बढ़ावे खातिर इस समय बहुत सारी तरह का अलग अलग योजना है। लड़की पैदा कैले पे पहला बच्चा अगर लड़की है अकेले लड़की पे हम अगर नहीं आगे लड़का पैदा करते हैं तो शिक्षा उच्छा कुल सरकार ने माफ कर देले बा, चाहे वो सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े कुछ होके देवे के नहीं बा। ओकरे बाद सुकन्या समृद्धि योजना चलत है, एक बाद अब इन योजना गांव में पहुंचावे के जो एक माध्यम शुरू हो गए बा वो है पिक्चर। वो अपने अनुसार वो कोनो न कोनो व्यवस्था अपने जीवन के आगे चलावे खातिर सरकारी योजना से खुद के जोड़ पाई, और जो पढ़ल लिखल ना हुई

0: तो केहू बतेबो करी तो बिचौलिया के बीचे में रहिए में ओकर करवे नहीं पूरा हो पावता।
1: कहले के मतलब ये है कि अगर जो महिला ज्यादा पढ़ल लिखल है तो कम से कम वो अपने मोबाइल पे खुद खोल के नेट पे सारा चीज सर्च कर सकती है और सारी योजना के बारे में जानकारी पता करके अपन सारे जो डॉक्यूमेंट लो के ले जाके खुद ही
0: अपन सब काम आगे बढ़ा सके,
1: भी कैफे पे जाके भरा सकती है। ते में शिक्षा
0: नहीं, मोबाइल ठीक से चला लिया तब घरों सबके घर बड़ा फैसिलिटी आ गई बा। बस ये है कि जानकारी होकल ढेर जरूरी बा। अब पढ़ले लिखले रहले तो कोनो काम कैले के बाद वो यो सोचेले कि चलो जैसे लोन लेवे खो तब आजो गांव में लोग सोचेला कि सोना गहना हमार है जो उनके बचा के चोरा के धैले रहा। पढ़ल लिखल रहले तो वही पे लोन लेके अपन कार बढ़ा ले। तो हमें कोनो ऐसा बात ना है बा, पढ़ाई लिखाई तो हर तरीके से जरूरी बा।
1: और सबसे जरूरी बात ही बा कि ग्रामीण महिला जन अगर जो शिक्षित है तो परिवार नियोजन के बारे में उसे का लाभ मिल सकता है।
0: देखिए परिवार नियोजन तो हमारे देश खातिर बहुत जरूरी हो गई बा। हम दू हमार दू का नारा बहुत पहले सरकार ने देले बा। पढ़े लिखे लोग तो अब हम एक हमारा एक का नारा में भी आगे बढ़ गए हैं। आजो गांव में महिलाएं मानत आड़ी कि लड़का होकल एक ज्यादा जरूरी बा, लड़की है तो केहू न केहू के घरे चल जाए। ये है कि जब पढ़ लिख ले ताड़ी तो जाना ताड़ी कि लड़कियों कमाए बहरा चल जाती या लड़को कमाए बहरा चल जाता, तो उनके बीच इतना तो जागरूकता आ गई बा कि लड़का होके चाहे लड़की होके कोनो विशेष अंतर ना है।
1: आज भी महिलाएं जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक ना, खास करके महिलाएं जो अपनी तो शिक्षा में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका था।
0: शिक्षा जब रही तो महिलाएं जानी कि जब ले हम नीक से चलता नहीं पूरा परिवार नीक से चलता। ग्रामीण में होला तो सोचेली अच्छा चला हमके घर वे रहेगा चले दा तो ऐसे ढेर परेशानी बढ़ा के तब वो अस्पताल जाली तो अपन खतिर समस्या खड़ा कर ली, घर वालन खतिर समस्या खड़ा कर ली। ऐसे शिक्षा रही तो जल्दी जान जाइए कि अब हमके चले हाथ झुनझुनाता तो चलो डॉक्टर के दिखा ले, चक्कर आता तो चलो डॉक्टर के दिखा ले, कोनो और समस्या होता तो चलो डॉक्टर के दिखा ले, ऐसे पहले समस्या बढ़ जाए वो डॉक्टर लगे जाए ठीक समझिए।
1: और जैसे गाँव में नई नई जैसे लड़कियां जोन बाटी और किशोरावस्था में पहुंचे थी तो उनके भी पहली बार अगर जो मासिक धर्म आ जाता तो कुल की जानकारी मिल जाए तो वो कहाँ जा सकती है।
0: जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ और जितना मास्टर जूनियर के ऊपर कहा है उन्हों को कुल चीज पढ़ावल जाला बतावल जाला। एकरे बाद आशा बहु चलावल जाता रही जे अंगना से लगाए स्कूले तक विद्यालय तक लेकिन के पहुँचावता रही, तो इनके माध्यम से अब ओकरे विषय पे खुल के बात हो सकेला। गावन में आजो कुल मासिक धर्म पे बात कैल के नीक नहीं मानेला, एक छुपौले वाला बात मानेला, पर्दा में रखे वाला बात मानेला। लेकिन ये है कि जब ले ओकरे बारे में हमें सही तरीके से लड़कीन के नाय बताए तो कैसे वो अपन व्यवस्था ओकरे अनुसार सही प्रकार से कर पाई है कि हाँ जो होता हमारे साथे तो नॉर्मल है कि हमके कहीं ऐसे जरूरत लगा था कि हमके डॉक्टर के पास जाए चाहिए, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई में जरूरी हो जाता।
1: और जो सरकार जो है किशोरी खातिन योजना चला रहा बाटी तो उनमें शिक्षित महिला अगर जो है उसे लाभ कितना मिल सका था।
0: शिक्षित होकले से लाभ ये हो जाये कि सरकार तो बहुत सारी योजना चलावती है, जो ओकर लाभ पाओ था तो एक के बाद दूसरी योजना, दूसरे के बाद तीसरी योजना, तीसरे के बाद चौथा योजना, लगातार एक के बाद एक दूसरा लाभ लेहत चल जाता। आज नाई शिक्षित बात है जनते नाई बार रोज सोचते रह जाता कैसे करी अकुल योजना उनके हाथे निकल जाता।
1: डॉक्टर स्मिता बहन जी हमारे कार्यक्रम में आईनी और इतना निमन जानकारी देनी एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ भाई देखा इतना निमन जानकारी खाती नहीं इनकरा के दिया जा धन्यवाद और बैठ के मैं मन मनसा इन खाती फिर से सुन लिया जाएगा गीत।

हाँ बहन देखो, अपनी बैठकी में पुरहर जानकारी भी लेन जा, मन मनसान भी भइल, लेकिन हमन का समय से बदल बाड़ी जा और घड़ी इशारा कर रहल बा आप सबसे विदा लेवे के। तब फिर मिले के, तब तक खातिन बहन सबके नमस्ते।

ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभी वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी समाचार सुने। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान के कथित हेराफेरी मामला में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच से जुड़ल स्थिति रिपोर्ट सौंपे के कहले हो। न्यायालय यह मामला में सीबीआई जांच के मांग से जुड़ल याचिकन पर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार आ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नोटिस जारी कैले बा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आ न्यायमूर्ति जय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन का पीठ याचिकन का सुनवाई कैलस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के सतही तीन गो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैलें। लखनऊ

0: कानपुर एक्सप्रेस वे पर बिहने से गाड़ी दौड़े लगे हैं।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में आयोजित एगो समीक्षा बैठक में शामिल भेलें। बैठक के दौरान प्रदेश में चल रहल आ प्रस्तावित सड़क परियोजनन के प्रगति, जमीन का अधिग्रहण आ निर्माण कार्य का समीक्षा कैल गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल भेल हैं। ए मौका पर वहां के कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का हेल्थ सिस्टम आत्मनिर्भर आ जन केंद्रित बन के उभरल बा।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मन पर योगी की पाती साझा करत लोगों से वृक्षारोपण के अपने जिंदगी के संस्कारन आ उत्सव से जोड़ने के अपील कैले हमें। एगो रिपोर्ट।
3: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर नया इतिहास रचा है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नव सामर्थ्य का जयघोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश समेटे यह अभियान सनातन चेतना का महोत्सव है। श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: गोरखपुर जोन के करीब एक दर्जन जिलन में पुलिस की ओर से बहुबेटी सम्मेलन आ कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए महिला, बुजुर्ग आ दिव्यांग लोगों के प्रति होखे वाले अपराधन पर नियंत्रण का कोशिश कैल जा रहा हो। अपर पुलिस महानिदेशक मोथा अशोक जैन आज गोरखपुर के सूचना संकुल में आयोजित एगो कार्यक्रम में मीडिया से बतियावत कहने कि एह पहल के तहत बहु बेटियन, बुजुर्ग लोगिन आ दिव्यांग लोगिन से पुलिस की ओर से लगातार संवाद कैल जा रहा बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के साथ ही कई गो औरियो जिलन में बीतल रात भइल बरखा के बादे आज दिन भर लोग उमस भरल गर्मी महसूस कैलें। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश बतौलन कि राज्य के तराई आ पूर्वांचल के कई जिलन में 3 दिन ले गरज चमक के साथे हल्लुक से लेके मध्यम बरखा भइले के अनुमान बा।
4: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
0: बरखा बैराजन से पानी छोड़ेले के नाते प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा बा। समाचार पूरा भेल, नमस्कार। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे

0: सहित 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कल से वाहन दौड़ने लगेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में आयोजित एक समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का हेल्थ सिस्टम आत्मनिर्भर और जन केंद्रित बनकर उभरा है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि एसेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर योगी की पाती साझा करते हुए लोगों से वृक्षारोपण को अपने जीवन के संस्कारों और उत्सवों से जोड़ने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर नया इतिहास रचा है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नव सामर्थ्य का जयघोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश समेटे यह अभियान सनातन चेतना का महोत्सव है। श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: गोरखपुर जोन के करीब एक दर्जन जिलों में पुलिस द्वारा बहुबेटी सम्मेलनों और कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के प्रति होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। अपर पुलिस महानिदेशक मुथा अशोक जैन ने आज गोरखपुर के सूचना संकुल में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस पहल के तहत बहु बेटियों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों से पुलिस की तरफ से निरंतर संवाद किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई अन्य जिलों में बीती रात हुई बारिश के बाद आज दिन भर लोगों ने उमस भरी गर्मी महसूस की। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
4: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
0: बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
4: पंचों
5: जय जवान जय किसान।
4: हाँ भैया, देखा अपन बैठकी तो शुरू हो गई।
5: बिल्कुल।
4: अब पंच भाई ये समय जो बाटे की धान का रोपनी कर रहल बाना।
5: बिल्कुल।
4: खेत तैयार कर रहल बाना। तो देखा आज अपनी पंच भाई के बतियाल जा कि जो उन खेत में खरपतवार होला ओकर नियंत्रण कैसे कर जाए, जैसे कि पंच भाई के लाभ होके।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: कोनो भी परेशानी ना होके।
5: बहुत अच्छी बात बा। सबसे बड़ी चीज बा कि जो रोपनी के बाद के जो 30-45 दिन फसल के जो होला,
4: बिल्कुल
5: काफी जो बात ध्यान देवे के समय होला। ये समय में खर पतवार के नियंत्रण बहुत जरूरी होला। सबसे बड़ी चीज कि मुख्य फसल के जो पोषक तत्व तो होना, ओकर नमी आ धूप छीन लेने के वजह से फसल के जो बा पैदावार में काफी जो नुकसान होला। ऐसे खर पतवार के नियंत्रण जरूर करे के चाहिए।
4: बिल्कुल।
5: यांत्रिक विधि से होक है, चाहे जैविक विधि से होक है, चाहे रासायनिक विधि से होक है, ये तीनों प्रकार से जोन बाटे पूरा प्रयास करे के चाहिए कि जोन बाटे खर पतवार के नियंत्रण होक है।
4: बिल्कुल। तो कहल जाता है कि देखो जब भी खेती करी आप तो खर पतवार नियंत्रण का चाहे रासायनिक चाहे जौन भी उपाय होके ओके करी, ताकि आपका पैदावार अच्छा होके। तो देखो भाई अपनी बैठकी में और भी चर्चा करे के, लेकिन ओकरी पहले सुनवा दिया जाएगा बातचीत पशुओं में गलाघोटू के लक्षण व बचाव। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश से उनसे बातचीत करते ना विनय कुमार।
0: रोहन और रिया की लव।
6: पशुपालक भाई, आप लोगन का पूरा दिनचर्या खेती बारी कैला के साथ साथ पशुपालन में व्यतीत होला, जरूरी भी बा। काहे कि जब भी खेती बारी का काम कैल जाई, ओहमे से जवन भी अनाज भूसा पुआल निकली, ओही के खा के पशु अपन जीवन यापन करी आ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबसे पोषक तत्व भरल चीज दूध दही एकर उत्पादन करेला। दुनिया में कोनो ऐसन मशीन नहीं बा जना के दूध का निर्माण करे, घी का निर्माण करे, लेकिन पशुपालन ऐसा व्यवसाय है कि जितना खराब से खराब जन कृषि का अवशेष बा ओके अगर उत्तम चारा में परिवर्तित कर दिया जा तो पशुपालन में राशन का काम करेला। बचल खुचल जौन भी चीज बा पशुअन के खिया के अच्छा दूध उत्पादन लिहल जाला। लेकिन समस्या तब आवेले जब हमन के बूझ ना पावे नहीं जा कि हमारे पशु के कौन बीमारी आइल आ एक दिन दो दिन या और तो और सुबह से

0: के बाद ओकर निदान करे के या पहले से कहां से निदान करी, कहां से पकड़ बनाई कि जौन बा बीमारी हमरे घर में या हमरे पूरा हर मने वापस साला में न आवे, एकरे बारे में हम आपके बतावत नहीं कि गलाघोंटू के लक्षण ज्यादा बीमारी तब फैले ली जब हमरे जमीन में नमी बहुत बढ़ जाला। एकर मतलब बरसात सीजन शुरू भइले के पहले। आज हमारे सब पशुपालक ई जरूर जानत हुई है कि जौन बा गर्मी जब लगा ला ओकरे पहले टीकाकरण गलाघोंटू के करवा लिहल जा। कहे कि जब आप टीकाकरण करवाइबे तो हमें जौन बा 14 दिन कौनो टीका के शरीर में गईले के बाद वो बीमारी से लड़ले के क्षमता 14 दिन बाद प्राप्त होला, जौने के इनक्यूबेशन पीरियड कहल जाला। एकरे बाद एकर लक्षण का हो, जैसे जमीन में नमी आई, कहीं से घास आप ले आईला मतलब मेड़ी पर से या कहीं से वो खैले को कर समय पशु में आई तो उस वही के द्वारा उस शरीर में अगर टीका आप ना लगोले हैं तो 14 दिन जौन पार। अच्छा, कुछ लोगों का सोच बा कि 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले टीका लगोली और फिर भी मरिया गलाघोंटुआ खो गए, तो एकरे खातिर मुख्य चीज ये बा टीका लगोले के 14 दिन के बाद आप जौन बा एक चीज जैसे निर्फिक्र रही 14 दिन के बाद, ओकरे पहले तो चिंतित भई आपके मने वो करू हो।
1: एक चीज बताएं कि जब गला घोंटू हो जाला तो पशु के अंदर लक्षण कौन लगेला, कैसे जाने के कि गला घोंटुए है?
0: अच्छा, पशुअन का सबसे बड़ी चीज है कर लक्षण ये है कि शरीर का टेम्परेचर 106 डिग्री फारेनहाइट हो जाला, शरीर एकदम तपने ताप में अगर हाथ रखे जैसे गर्म एकदम लगी और ओकरे गले के नीचे एक सूजन होला। पहले शुरुआत कुछ 3 या 4 घंटा बाद सूजन होला, ओकर सिर्फ ये सूजनवा भइले बाद धीरे धीरे और बढ़त जाला। बढ़ले के बाद एक स्थिति एक समय ज्यादा से ज्यादा अगर 24 घंटे तक नॉर्मल अगर दवा दारू आप नहीं करोगी तो 24 घंटे से ज्यादा उम्मीद कम रहा ला कि ये जिंदा रह पाई। एकरे नाते अगर संजोग से आप टीकाकरण कौनो कारणवश न करौले हो तो कौनो नजदीक के पशु अस्पताल पे चल जाई, वहां से जौन बा कौनो डॉक्टर साहब के ले आके ओकर एंटीबायोटिक वगैरह जौन देवे बा दे के तब ओकरा उसके बाद 8 घंटे में एक फिर रिपीट कराई, माना फिर दोबारा लगवाई फिर हर 8-8 घंटे के इंटरवल में, तो संभावना यह में आपके बढ़िया मिली।
1: कौना कौना पशु के ई ज्यादा बीमारी होला और उनके कौना उम्र में ज्यादा ई परेशान करे?
0: देखिए सबसे बड़ी चीज महिष वंशी और गौ वंशी।
1: अच्छा, गाय या भैंस?
0: भैंस, तो भैंस में पड़िया जो मतलब जो बियाइल न होली ने कुबार वहां में ज्यादा पावल तो सब में जाला लेकिन वहां में ज्यादा पावल जाला। वह में मुख्य चीज एक काम अगर बाईदी हो गई तो बालू के पोटरी बना लें, पोटरी बना के हल्का सा कहीं दूर जो धुआं उआ जो उनके मने पशु के नाकी में न जाए, जैसे वो खाली वो जो सांस वाली नली के खाली जितना सूजनवा होला तो वो दबाव देला। दबाव देने के बाद वो धीरे धीरे जब सांस वाली नली पे दबाव ज्यादा बढ़ जाला मृत्यु वही जौन बा सांस रुकले के कारण ही होला।
1: यही से के गला घोंटू
0: कहल जाला। और दूसर चीज है कि दूर थोड़ा सा आग जला के तावा रख के वह बालू के पोटरी से धीरे धीरे सेक के जौन सूजनवा जब कम हुई तो ससवा वाले वो मतलब वो जौन बा कफा होकर बाहरे निकल करी और सूजनवा हल्का सा कम हुई और ओकरे बाद तब तक डॉक्टर साहब के बुला ली है दवा दारू ओके करवा के तब जौन। अच्छा, दूसर चीज आपके करे कब कि अगर संजोग से आपके सफलता मिलल तो 4 दिन तक आप हरा चारा या यह तरह के चीज जौन मने बाता हुआ खेत में या कहीं और ऐसे जगह भूसा सूखा भूसा और पानी ताजा यह दी है और यही दहले। अच्छा, दूसर चीज अगर हो गई तो अपने पूरे पशु के मान ली सब आपके बगलिया वाले हो गई तो वह इलाका में अपने पशु के मत भेजी जौने इलाका में छोड़ ले बाटे चरे खाते, कहे कि कहीं कहीं पशुअन के ले जाके मर गई, मरले के बाद ले जाके वैसे लोग फेंक देने तो वह से बीमारी ज्यादा फैले की संभावना होला। और फैले का एकरे खातिर ई बा अगर कहीं मृत्यु हो गई तो आप गड्ढा बढ़िया खोद के वो हमें पशु के डाल के ऊपर से चूना डाल दें जौने जौन बा ढक दें कि और पशुओं में वह तरह की बीमारी आपके फैले नहीं, जैसे ज्यादा नुकसान।

0: ना हो।
1: अच्छा, बैल के या यही तरह से बछिया के या दुधारू गाय के भी ज्यादा होले?
0: हो ज्यादा नहीं हो, कम होले, लेकिन होले। मतलब अच्छा। मैंने ऐसा नहीं बा कि ना हो, लेकिन थोड़ा सा पड़िया में और भैंस में ज्यादा उम्मीद हो।
1: अच्छा, तो एकर टीकाकरण सबसे बढ़िया व्यवस्था बा?
0: व्यवस्था है, और टीकाकरण खातिर जितने अपने प्रयास कई के, ये ना कि जब वो पशुपालन वाले लोग या और डॉक्टर साहब लोग आपके दरवाजे पर हैं, उनके खुदे खुदे खोज के कहें कि टीकाकरण करौले के 14वें दिन बाद बीमारी के प्रति लड़े के क्षमता वह टीका से आई, तो ऐसा ना हो कि जौनबा कि आपके जौनबा तब तक जौनबा लेट हो जाए, कोनो कारण हो तो दिक्कत हो जाए।
1: हाँ, यही तरह से गांव में जितना भी पशु हो, चाहे गाय होके चाहे बैल होके या भैंस, ओकर टीकाकरण सबसे पहले करवावे। आ टीकाकरण करावला के 14 दिन तक उनके बाहर कहीं चरे के ना भेजे, या ऐसा जगह से घास का कटाई ना करें जहाँ का बरसात का पानी लगल होके और उनमें कोनो तरह का संक्रमण फैलल होके। जौना पशु के गला घोंटू हो गई बा, ओके आहार कोना तरीका से देवे के चाहिए, कौन कौन चीज खियावल जाए?
0: हम अपने पशुपालक के यह सिर्फ बताए चाहते थे कि कम से कम 4 से 5 दिन, जैसे आपका अगर सुधार हो गई, दवा आप 8-8 घंटे पे लगवावत नहीं सुई, तो ओके उखल भूसा हल्का सा ताजा पानी डाल के, चोकर वगैरह डाल के अगर कुछ खाता तो चरे के मत छोड़िए, कहीं चरे के भेज में तो वही जहाँ मतलब वह तरह के गंदा बा कहीं कुछ बा, वहाँ के चारा अगर वो पशु उठा ली तो फिर गला घोटू तुरंत हो जाए।
1: दूसरा पशुओं में भी फैली कहें से कि जहाँ घास चरले बा ओकर अगर लार लार ओजा ओकर कोनो बैक्टीरिया अगर गिरल बाटे तो उसे संक्रमण बड़ी तेजी से फैली। हम तो यह कहब कि जे अब ही टीकाकरण नहीं करौले बा, तुरंत अपने पशुओं के टीकाकरण करावे, असंक्रामक बीमारी जैसे गला घोंटू बा लंगड़िया बा ऐसे बचाव का उपाय पहले कह ले। डॉक्टर साहब इतना बढ़िया जानकारी दिली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भाई, देखा अपनी बैठकी में इतना निमन जानकारी दिया तो जे पंच भाई लोग पशुपालन कर रहल बा तो उ तो एकर पूरहर लाभ उठा
3: बिल्कुल, सके बिल्कुल।
2: कि कौनो भी प्रकार का बीमारी हो तो ओकर इलाज कर सकेला। देखा अपनी बैठकी में और भी बात करावे के और बातचीत भी सुने के करे के, लेकिन ओकरी पहले तनी मन मनसाइन खातिर सुन लिया जाएगा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: हाँ पंच भाई पुरहर मन मन साइन भर सुनी लोकगीत आई सुनल जा। अगले क्रम में बातचीत धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण ये विषय जानकारी देते ना डॉक्टर एस के तोमर जी, बात करते ना विनय कुमार जी, तो पंच भाई सुने लाभ लें।
1: खरीफ के समय सबसे महत्वपूर्ण जौन समस्या होले किसान भाई लोगन का वही होले कि खर पतवार का नियंत्रण कैसे कइल जा। काहे कि फसल और खर पतवार दोनों के वृद्धि खातिर जौन अनुकूल परिस्थिति होला वो होला अधिक तापक्रम, वायुमंडल में आर्द्रता और पानी। ये समय तीनों परिस्थिति सामान्य रूप से हर जगह पर्याप्त मात्रा में बा और खास तौर से जौन खरीफ का फसल खड़ी है धान का अगर हमन का बात कही जाए जौन सहगर रकबा में उगावल जला वो कुल का रोपाई हो गयी। खड़ा फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे कइल जाई एकरे खातिर आज अपने बीच फोन लाइन से जुड़ल है कृषि विज्ञान केंद्र बेली पार्क के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर एस के तोमर जी। सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण कैला का कौन कौन उपाय बा जौन सबसे सुरक्षित बा और काफी किफायती भी बा।
2: सभी किसान

भाइयों को मेरा नमस्कार। इस समय हमारी धान की फसल सारे किसान भाई रोपाई या बुआई कर चुके हैं। ऐसे में खरपतवारों का जमाव शुरू हो जाता है। चूंकि इस बार नमी भी बराबर बनी हुई है, तो खरपतवार भी अच्छी मात्रा में उग रहे हैं। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी मैं सलाह किसान भाइयों को ये देना चाहूंगा कि हमारी धान की फसल अगर हम बात करते हैं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर लगभग 80 से 85% क्षेत्रफल में धान गेहूं की खेती होती है। और लगातार इस फसल चक्र के लेने से कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो धान गेहूं में बराबर आ रहे हैं और उससे काफी उत्पादन पे प्रभाव हमारे पड़ रहा है। अगर हम धान की बात करते हैं तो इसमें 25 से लेकर के और 60% तक खरपतवारों द्वारा नुकसान अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है। अगर खरपतवार आपके खेत में रहते हैं तो ये हमारे फसल के साथ भोजन के लिए, पानी के लिए, स्थान के लिए, पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन करते हैं। और चूंकि इनका जो सिस्टम होता है वो हमारे पौधों से अलग होता है, ये हमारे पौधों से 5 से 10 गुना ज्यादा पोषक तत्वों की मात्रा कम समय में ले लेते हैं जमीन से, और इससे हमारा पौधा जो है उतने पोषक तत्व नहीं ले पाता है और वो प्रभावित होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए, खास करके धान में जब खरपतवार नियंत्रण की हम बात करते हैं, तो आज के करीब 10 साल पहले ज्यादातर हमारे किसान भाई ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते थे और वो रोपाई के 3 से 7 दिन के अंदर प्रयोग करते थे, जिसको हम प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी के रूप में जानते हैं, और उससे अच्छा खरपतवार नियंत्रण भी होता था। लेकिन फिर आगे जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हैं वो आ गए, और उनके आने से किसान भाइयों ने जो बुआई या रोपाई के समय खरपतवार नाशी डालते थे उसको बंद कर दिया। और अब जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जब जमाव हो जाता है खरपतवारों का, और किसान भाई देखते हैं कि हमारे खेत में खरपतवारों का जमाव है, तब उसमें खरपतवार नाशियों का छिड़काव करते हैं। और इसमें एक ही दो खरपतवार नाशी हैं जो जमाव के बाद ज्यादातर हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं या प्रभावी हैं। इसकी वजह से हुआ क्या कि कुछ ऐसे खरपतवार आने लगे जो इन खरपतवार नाशी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो है हमारे, इनसे कंट्रोल नहीं हो पाते और आपका उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसके लिए कैसे नियंत्रित करना है, पहली तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी धान की रोपाई करते हैं तो आप अपने खेत में ब्यूटा क्लोर या प्रिटला क्लोर, इसका इस्तेमाल रोपाई के 3 से 7 दिन के अंदर खेत में पानी खड़ा हो उसमें किसान भाइयों को करना चाहिए। लेकिन अब वो स्टेज निकल गई है, अब आपको केवल वो रास्ता रह गया आपके पास कि जमाव के बाद वाला जो है खरपतवार नाशी आपको प्रयोग करना है। आपके खेत में जो खरपतवार होते हैं उसमें खास करके सवई है, डवरा है, आपका मोथा है, ये खरपतवार हर साल और काफी मात्रा में उगते हैं। इसके साथ और भी खरपतवार हैं, बहुत से खरपतवार आपकी धान की फसल में देखने को मिलते हैं। तो इसमें किसान भाई को चाहिए, जब आपकी फसल रोपाई के 25 से 30 दिन की हो गई हो या बुआई के बाद 25 से 30 दिन की हो गई हो और उसमें खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो गए हो, देखिए बेस्ट जो होता है आपका खरपतवार नियंत्रण का पोस्ट इमरजेंस में, वो होता है कि जब आपके खेत में खरपतवार 2 से 4 पत्ती के उग गए हो उस समय आपको छिड़काव करना होता है। और छिड़काव करने के लिए आपको इसमें बिस्पेरीबैक सोडियम, इसकी 100 ml मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए 125 से 150 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके 90% खरपतवार जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं, अगर आपने सही तरीके से इसका स्प्रे किया है। कंपनी इस दवाई की मात्रा 80 ml का पैक देती है, लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर ने, जो किसानों के खेत पर जाकर के जो प्रयोग किए हैं उसमें ये पाया है कि 100 ml दवाई 1 एकड़ में आपको डालनी चाहिए। अगर इससे कम आप 80 ml डालते हैं तो खरपतवार थोड़े दिन के लिए मुरझा जाते हैं और फिर वो तेजी से बढ़ते हैं और आपको लगता है कि दवाई ने काम नहीं किया। तो दवाई की सही मात्रा बहुत जरूरी है। 100 ml मात्रा आप 1 एकड़ खेत में 125 से 150 लीटर पानी में घोल बना करके जब 2 से 4 पत्ती के आपके खेत में खरपतवार हो गए हो उस समय छिड़काव करें। दूसरा ये ध्यान रखें कि आप जब छिड़काव करते हैं तो आपके खेत में पानी नहीं होना चाहिए, और जब आप छिड़काव कर देते हैं उसके 1 दिन बाद खेत में आपको हल्का पानी जरूर चलाना चाहिए। इससे आपका जो खरपतवार नाशी है इसकी क्षमता बढ़ जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि खरपतवार नाशी का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है।
अब इसमें किसान भाई एक

0: और महसूस करते हैं। जैसे हमने बताया कि कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो अकेले इस खरपतवार नाशी से नहीं जाते हैं और वो फिर खेत में खड़े रहते हैं, तो ऐसे में किसान भाई को चाहिए कि बिस्पेरीबैक सोडियम के साथ में आप पायरोजो सल्फ्यूरान आता है एक, इसका ये टेक्निकल नाम है, तो आप इसको लेकर के 60 ग्राम मात्रा इस 100 ml जो बिस्पेरीबैक सोडियम है इसके साथ मिला करके, और उतने ही 125 से 150 लीटर पानी, यानी कि दोनों को एक साथ मिला करके आप इसको घोल करके आप इसका छिड़काव करें, तो इससे खरपतवारों का नियंत्रण अच्छी तरीके से हो जाता है और आपको अच्छी फसल मिलेगी, ये संभावना आपकी प्रबल हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जब दवाई के छिड़काव कैल जा तो ये दवा का कोनो कुप्रभाव, या दवा कम हो गई अधिक हो गई, या समय कोना समय कैल जा ताकि एक प्रभाव सही रहे और फसल के नुकसान ना होके और ज्यादा किसान भाई लोगन का लागत भी ना बढ़े।
0: देखिए, मैंने इसीलिए आपको बताया कि अगर आपके यहाँ खरपतवारों की ज्यादा समस्या नहीं है तो केवल आप बिस्पेरीबैक सोडियम को आप डालें, और आपको लगता है कि हमने पिछले साल डाला था और आपको काम नहीं किया है या कुछ ऐसे खरपतवार हैं, तो आप इसके साथ पायरोजो सल्फुरान मिला करके, बहुत महंगा नहीं है, आप इसको मिला करके इसका छिड़काव करें। जहां तक छिड़काव की बात है, मैंने बताया कि दो तीन चीजों का विशेष तौर से खरपतवार नाशियों में छिड़काव करने में ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब भी आप खरपतवार नाशी छिड़कते हैं, आपका जो नोजल है उसको ध्यान रखिए, आप फ्लैट फैन नोजल से आप छिड़काव करें। दूसरा, आपकी मशीन से ही होनी चाहिए, यानी कि उसका फुहारा ठीक बनना चाहिए। तीसरा, जब भी आप स्प्रे करते हैं तो आपका नोजल जो है जमीन से 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो, उसको आप छिड़काव करें, और अगर संभव हो तो बूम नोजल का प्रयोग करें। इस बूम नोजल में क्या होता है, इसमें तीन नोजल लगे होते हैं, एक पाइप लगा करके आगे तीन नोजल दे दिया जाता है, तो आपको उसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपको लेकर के पूरे खेत में चलना होता है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खरपतवार नाशी का अच्छा प्रभाव हो, जो घोल है आपका, जो मात्रा बताई जाती है, उस घोल को आप अच्छी तरीके से बना करके आप उसका छिड़काव करेंगे। और ये देखें कि जिस दिन आपका मौसम साफ हो, यानी कि कम से कम 5 से 6 घंटे छिड़काव के बाद आपका मौसम साफ रहना चाहिए, यानी कि बरसात नहीं होनी चाहिए, आपका धूप हो तो अच्छी बात है, तभी ये दवाइयां जो है आपका अच्छा असर करेंगी। अगर आपके पता चला कि मौसम विभाग ने आपको फोरकास्ट दी है कि बरसात होने वाली है आज, तो आप जो है उस दिन स्प्रे न करें, इस चीज को आप ध्यान रखें। जहां से भी दवाई लें आप अच्छी कंपनी की दवाई लीजिए और विश्वसनीय जगह से आप दवाई को लेकर के ही छिड़काव करें। और अगर कोई विशेष बात होती है, आपको विशेष आपके खेत में खरपतवार हैं, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार से संपर्क करें। एक चीज और मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जहाँ जल जमाव होता है या पानी बहुत दिन तक बना रहता है, वहां पर एक अजीब तरह का खरपतवार किसान भाइयों के खेत में जमता है, जिसको हम कुछ लोग कहते हैं नेवरा की पूंछ है, और उसमें सफेद से ब्राउन कलर का फूल आता है, और ये पहले ही फूल आ जाता है इसमें, बहुत तेजी के साथ ये बढ़ता है। तो इसको किसान भाई को अगर इस तरह का ये जहाँ जल भराव वाली स्थिति होती है उन खेतों में ज्यादा जमता है, तो उसमें एक केमिकल आता है, खरपतवार नाशी आता है, जिसको हम लेकर के उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसको हम फिनोक्सा प्रो पी इथाइल कहते हैं, और इसकी 450 ml मात्रा प्रति एकड़ 150 लीटर पानी घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इससे आपका जो दूसरे खरपतवार हैं जिनमें खास तौर से सवाई है, डमरा है, मोथा, ये भी इससे कंट्रोल हो जाते हैं। और
2: हाँ भाई देखो, अब घड़ी इशारा कर रहल बा पंच भाई से विदा लेवे के, फिर मिले के। पंचों जय
3: जय
2: जवान
3: जवान
2: जय
3: जय
2: किसान।
3: किसान।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना। राजेश राजभर अपनी पुत्री प्रियंका कुमारी के लापता होने की सूचना हम तक पहुंचाते हैं। प्रियंका कुमारी की उम्र है 22 वर्ष,

0: लंबाई 5 फुट 5 इंच, रंगी हुआ, ये दिनांक 27 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। राजेश राजभर, ग्राम टूटुवारी, पोस्ट टूटुवारी, पुलिस चौकी कुरंटा डी, जिला बलिया। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 7388637236। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7388637286। शिवप्रसाद तुरहा के लापता होने की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलिया से हमें प्राप्त हुई है। शिवप्रसाद तुरहा की उम्र है 65 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग सांवला, ये दिनांक 28 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। बुनिशा, ग्राम रेवती, छोटका टोला, वार्ड नंबर 6, थाना रेवती, तहसील बास्टे, जनपद बलिया। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8797550829। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुनिए, 8797550829। प्रीति सिंह के लापता होने की सूचना इनके पिता मनोज कुमार हमें देते हैं। प्रीति सिंह की उम्र है 17 वर्ष, रंगोरा, लंबाई 5 फीट 4 इंच, ये दिनांक 17 सितंबर 2024 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। मनोज कुमार, ग्राम माधोपुर, पोस्ट भिलाई, थाना रसोड़ा, जिला बलिया। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 7880966806। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7880966806। कुमारी ब्यूटी के लापता होने की सूचना इनके पिता सनोज कुमार हमें देते हैं। कुमारी ब्यूटी की उम्र है 15 वर्ष, लंबाई 4 फीट 5 इंच, रंग हो रहा है, ये दिनांक 17 जून 2026 से लापता हैं। अगर आपके पास इनके संबंध में कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। सनोज कुमार, ग्राम हरिया कला, पोस्ट हरिया कला, थाना रेवती, जनपद बलिया। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8604938549। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8604938549। कोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
0: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, आई सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज के कलाकार हैं छेदी यादव।

0: रसिया से भूली गई है सुधिया हमारे हो विदेशिया, भूली गई है सुधिया हमारे हो विदेशिया, भूली गई है सुधिया हमारे हो विदेशिया।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर

सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: अभी आपको लोकगीत सुना रहे थे छेदी यादव। अब आज का लोकधारा कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। देश हमारे कार्यक्रम में लीजिए सुनी राजविजय यादव से उनके कुछ काव्य रचनाएं।
1: लोकराग में 12 मासा मन गोर गवना करा के पटा गईल जाके अजोर घर वाला गेला अन्हार हो की

लोकरा कजरी झूला झूला ताली भवानी संग में भोला दा।

अभी आपको अपनी कुछ भोजपुरी काव्य रचनाएं सुना रहे थे राजविजय यादव। अब आज का दिन समर कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी गोरखपुर है। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनी बंगला गीत।

0: आमी ए बार मामा बोले डाकी आमी आमर डाके डाक सोने ना कौन साधने तो माए पावो या मैं बोलो ना কোন সাধনে তোমায় পাবো আমায় বলো না
1: মামা বলে ডাকি আমি

0: टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 45 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन्नाव में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग के 32 किलोमीटर के एक खंड का लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने जा रहे 4 लेन वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश बेहतरीन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के लिए अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
8: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने

0: चिकित्सा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
1: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में कई बड़े निवेश आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और वहाँ जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।
0: 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उधर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। संतोष दुबे ने बताया कि SIT ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने SIT को सौंप दिए हैं।
4: SIT के सम्मानित सदस्यों ने, अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारा पक्ष जाना, अपेक्षा की कि और भी कुछ आपके पास हो तो हम तक उपलब्ध कराएं। जो बातें उन्होंने हमसे

0: पूछा, मैंने उनको पूरा जो हमने देखा सुना जाना समझा वो सब बताया।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर मंथन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। कल सुबह ये समिति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके विचार जानेगी।
2: कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में प्रस्तावित है। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े विभिन्न वादों के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अगर मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकलता तो मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा। 40 से 50 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पार्टी चाहिए,
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत फिल्मी भजन।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई।

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

अभी आप फिल्मों से ले गए कुछ भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी गोरखपुर है, हिंदी का आश्रम में लीजिए सुनिए गीता शर्मा की।

0: वार्ता हिंदी रंगमंच।
1: आधुनिक हिंदी रंगमंच का इतिहास मोटे तौर पर 19वीं शताब्दी के मध्य से आरंभ होता है। तब से लेकर आज तक इस यात्रा में कई पड़ाव आए हैं। हिंदी रंगमंच की इस विकास यात्रा में संभवतः हिंदी रंग चेतना भी नए नए स्वरूप ग्रहण करती रही है और मंचन की प्रक्रिया में हिंदी नाटकों को रंगमंचीय सार्थकता और नवीनता प्रदान करती रही है। विशेषतः स्वतंत्रता के पश्चात आज़ादी के नवीन वातावरण में एक स्वतंत्र सांस्कृतिक चेतना की अनुभूति ने अन्य बातों के साथ साथ हिंदी रंग आंदोलन को भी एक विशेष गति दी तथा हमारी अपनी रंग परंपराओं के अन्वेषण के कार्य को विशेष बल मिला। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी रंगकर्मियों ने अनेक नवीन रंग प्रयोग किए तथा आधुनिक संदर्भों में भारत की अपनी रंग परंपराओं का सदुपयोग करते हुए नई और स्वस्थ रंग भाषा की रचना का प्रयास किया। सर्वप्रथम हिंदी नाटक जगत पर पारसी थिएटर और उसके रंगबोध का सर्वव्यापी और चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। यह पारसी रंगमंच की ही परंपरा थी कि हिंदी नाटकों, फिल्मों और हमारे जनमानस पर इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में आज भी कायम है। 20वीं सदी के आरंभ में हिंदी पारसी थिएटर का विकास हुआ। इसका मुख्य प्रयोजन कला से कहीं बढ़कर मनोरंजन, लोकप्रियता तथा धनोपार्जन रहा। ये प्रस्तुतिकरण के मूल तत्व हो गए अतिरंजना, अतिनाटकीयता, चमत्कार और उत्तेजना। भाषा उर्दू निष्ठ रही परंतु अधिक कोमल और ललित हो गई। संगीत में गजल ठुमरी को संवारा गया। संवाद में चुलबुलापन लाने के लिए तुकबंदी और शेरो शायरी का सहारा लिया गया। चरित्र चित्रण पर कम तथा कथानक और उसमें भी आकस्मिक परिवर्तन पर अधिक जोर दिया गया। इन नाटकों का समापन शिक्षा और उपदेश के साथ सुखांत होता था। प्रत्येक स्तर पर दर्शकों को चौंकाना और आश्चर्यचकित करना प्रमुख हो गया। कुल मिलाकर पारसी थिएटर की रंग दृष्टि ने एक नवीन रंग संसार का निर्माण किया। इस रंग मंच ने एक ऐसी रंग भाषा की रचना की जिसमें कलात्मक सूक्ष्मता तो नहीं थी लेकिन प्रदर्शन से जुड़ी स्थूलता और भव्यता अवश्य विद्यमान थी, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के आधार पर व्यवसायिक लाभ कमाना था। इसने हिंदी को एक रंग मंच तो दिया किन्तु सौंदर्य बोध इस रंग मंच के लिए आवश्यक नहीं समझा गया। कलात्मक अनुभूति की कमी, अति नाटकीयता और व्यावसायिकता ही अंत में इसके ह्रास के कारण बने। धीरे धीरे विकसित और जागृत होता भारतीय समाज, विशेषकर बौद्धिक वर्ग, अति नाटकीयता से हटकर यथार्थ की ओर बढ़ने लगा। अति नाटकीयता के स्थान पर नाटककार ने सांकेतिक रंगमंच से काम लेना शुरू कर दिया था। भारतेंदु सबसे पहले नाटककार और रंगकर्मी थे जिन्होंने अति नाटकीयता और फुहड़ता के विरोध में हिंदी नाटकों को एक कलात्मक दिशा प्रदान की। भारतेंदु ने अभिनय के अंतर्गत ही पात्रों की वेशभूषा और संगीत की चर्चा भी की है। उनका सुझाव है कि पात्रों की वेशभूषा स्वभाव और अवस्था के अनुसार बदल लेनी चाहिए। कुल मिलाकर रंग दृष्टि से भारतेंदु अपने नाटकों के अंत तक प्रयोगशील रहे। वे प्रयोग एक दूसरे से भिन्न और नवीन रंग प्रयोग है। वास्तव में भारतेंदु ने युग की प्रवृत्ति को पहचाना और उसके अनुरूप ही अपने नाट्य चिंतन को ढालने का प्रयत्न करके एक नवीन रंग भाषा के स्वरूप निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा प्रसाद जैसे भावी नाटककारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रसाद के समय में हिंदी रंग जगत पर पारसी रंगमंच का आधिपत्य स्थापित था, जिसके प्रति उनके मन में स्वाभाविक अरुचि थी। उन्होंने इस रंगमंच से समझौता करने की अपेक्षा इससे विद्रोह किया। प्रसाद के बाद हिंदी नाट्य इतिहास में एक यथार्थवादी चेतना दिखाई देती है जो इप्सन, बर्नार्ड शॉ, गालसवर्दी आदि पाश्चात यथार्थवादी नाटककारों के चिंतन से प्रभावित थी। हिंदी में लक्ष्मी नारायण मिश, उपेंद्र नाथ अस आदि इसी नाट्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यथार्थवादी नाटककारों और चिंतकों ने नाटक के परंपरावादी ढांचे का विरोध किया और अपनी अभिव्यक्ति का मुख्य साधन उन्होंने कार्य व्यापार तथा संवाद को बनाया। इन्होंने नाटक में काव्य में भाषा का पूर्णतः बहिष्कार करके नित्य की व्यवहारिक भाषा का समर्थन किया तथा वास्तविकता का आभास देने का प्रयास किया। इसी के अनुरूप नाटक के रंगमंचीय विधान में भी परिवर्तन किया गया। अब रंगमंची उपकरण सरल, सीधे साधे, अनअलंकृत होने लगा तथा नाट्य प्रदर्शन की प्रचलित युक्तियों एवं कला कौशल के द्वारा रंगमंच को भड़कीला बनाने का यह निषेध होने लगा। प्रयास यही किया जाता था कि रंगमंच पर अवतरित नाट्य स्थितियां वास्तविक जीवन का निकटतम आभास दें। आज़ादी के बाद के समय में हमें हिंदी नाटक जगत में एक नई रंग चेतना और नवोन्मेष दिखाई देता है। अब हिंदी के अपने नाट्य और रंगमंच के अन्वेषण पर विशेष जोर दिया जाने लगा। अब यह आवश्यक हो गया है कि एक तरफ एक नए प्रसंग और नए अर्थों से प्राचीन संस्कृत नाट्य, मध्ययुगीन नाट्य, उत्तर भारत के लोक नाट्य, पारसी रंगमंच, लीला नाट्य की परंपरा और उसकी नाट्य संपत्ति का अध्ययन किया जाए तो दूसरी तरफ इसी प्रसंग के पश्चिम के प्राचीन और आधुनिक नाट्य और रंगमंच को देखा जाए। वस्तुतः परंपरा

0: परंपरागत नाट्य संपत्ति किसी देश के रंगमंच के निर्माण के लिए प्राणदायिनी शक्ति होती है। इसी कारण इस युग में समसामयिक रंगमंच के लिए अपने पारंपरिक रंगमंच की खोज और जिज्ञासा हमारे लिए स्वाभाविक हो गई। यह सोच विकसित हुई कि अपने पारंपरिक नाट्य तत्वों और रूढ़ियों को नई कलात्मक दृष्टि से अपनाकर ही हम पश्चिम रंग तत्वों का प्रयोग भी अधिक कलात्मक रूप से कर सकेंगे। स्वतंत्रता के बाद के इस युग में रंगभाषा के स्वरूप और विकास की दृष्टि से नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। लोक नाट्य और परंपराशील नाट्य से प्रभावित होने के कारण नाट्य कला में यथार्थ की प्रवृत्ति को वे विशेष महत्वपूर्ण नहीं मानते। नाटक में समसामयिक विधिक समस्याओं को यथातथ्य निरूपित करने की अपेक्षा वे उन्हें कल्पना द्वारा निरूपित करने के पक्षपाती हैं। स्थूल घटनाचक्र के स्थान पर सूक्ष्म भावबोध को वे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अतिरिक्त रंग निर्देशों को उन्होंने नाटक के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना है। साथ ही नाटक में संगीत, नृत्य और पद्य के समावेश को उन्होंने खुलकर स्वीकृति दी। उनका मानना है कि भारत में संगीत विहीन रंगमंच जम नहीं सकता, क्योंकि भारतीय समाज में भावुक, संगीत प्रिय और किसी हद तक रोमांटिक जाति के लोग हैं। नृत्य को भी उन्होंने नाटक का एक अंग माना है। कुशल अभिनय को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उसके अभाव में कुशल लेखन, सुंदर दृश्य सज्जा आदि सभी तत्वों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आधुनिक हिंदी नाटककारों में राकेश मोहन ने हिंदी नाटक को अत्यंत सशक्त रूप से रंगमंच के साथ जोड़ा। प्रसाद के बाद हिंदी नाटक में जिस काव्यात्मकता का लोप सा हो गया था, उसकी भरपाई राकेश ने अत्यंत सक्षमता के साथ की और हिंदी रंगमंच के लिए बेहद उत्कृष्ट नाटक उपलब्ध कराए। वे नाटककार को सर्वाधिक महत्व देते हुए मंच को वस्तुतः नाटककार का रंगमंच मानकर ही चलते हैं। उनके अनुसार जब तक नाटककार रंगमंच को भलीभांति नहीं पहचानता, रंगमंच के व्याकरण और उसके मुहावरे को नहीं जानता और जब तक वह अपनी इस पहचान और समझ का सृजनात्मक उपयोग करने की क्षमता नहीं रखता, तब तक वह किसी श्रेष्ठ नाट्य कृति का सृष्टा नहीं हो सकता। तथापि रंगमंच के अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उन्होंने अपेक्षा नहीं की है। वे मानते हैं कि मंचन की प्रक्रिया में नाटक केवल नाटककार का माध्यम ही नहीं रह जाता, बल्कि वह एक संयुक्त प्रयास बन जाता है, जिसमें नाटककार, निर्देशक और अभिनेता की समान सत्ता रहा करती है। मोहन राकेश ने अपने रंग कौशल की तलाश पश्चिम की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि पूरी तरह अपने परिवेश से की है। राकेश ने रंग मंच के लिए पश्चिमी चकाचौंध को महत्व नहीं दिया, उनका सारा जोर सादगी पर रहा। इन सब के लिए उन्होंने प्रतीकात्मकता का अधिक प्रयोग किया। उन्होंने हिंदी रंगमंच की सही तलाश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार राकेश मोहन ने भावी नाटककारों और नाट्य चिंतकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और ऐसी नवीन रंग चेतना के विकास के लिए उनका आह्वान किया जो पाश्चात्य रंगमंच का अंधानुकरण करने के स्थान पर भारतीय परंपराओं के निकट हो और हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान को सामने लाए। इसके अलावा आधुनिक हिंदी नाटककारों में मणि मधुकर, मुद्रा राक्षस, भाष्य साहनी, ब्रिजमोहन शाह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शंकर शेष, रमेश बख्शी आदि अनेक रचनाकारों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने हिंदी रंगमंच में नवीन प्रयोग किए। रंग यात्रा का विश्लेषण तब तक अधूरा रहेगा जब तक उन रंग निर्देशकों और रंगकर्मियों का उल्लेख नहीं किया जाता जिन्होंने नाटक के सृजनात्मक रूप एवं अर्थ की व्याख्या करने और इसे दर्शकों तक संप्रेषित करने के लिए अनेक कल्पनाशील प्रयोग किए। इब्राहिम अलका जी, हबीब तनवीर, श्याम नंद जालान, सत्यदेव दुबे, ओम शिवपुरी, मोहन महर्षि, राजेंद्र नाथ आदि ने 7वें-8वें दशक में प्रस्तुतियों की रंग परिकल्पना में जिस अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है, वह आज़ादी से पहले की प्रस्तुतियों में नहीं मिलती। इसी तरह 8वें-9वें दशक में ब.व. कारंत, एम.के. रैना, बंसी कौल, रंजीत कपूर, अमाल अलाना आदि ने जिंदगी के यथार्थ के कई धरातलों को गहराई तक अभिव्यक्त करने वाले रंग शैलियों की तलाश की। कहीं नाटक को बंद प्रेक्षागृह से बाहर लाकर पारंपरिक रंग शैली खेला, कहीं काव्यात्मक धरातल को अपनाया और कहीं रीतिबद्ध शैली का व्यंगपूर्ण इस्तेमाल किया। इन्होंने कल्पनाशील मंच सज्जा, प्रतीकात्मकता, रचनात्मक प्रकाश व्यवस्था, कोरस, सूत्रधार, वाचक और संगीत के उपयोग, रंग उपकरणों और मुखौटों के इस्तेमाल, प्रदर्शन में दर्शकों की हिस्सेदारी आदि से रंग शिल्प के स्तर पर अनेक साहसिक प्रयोग किए। कुल मिलाकर हिंदी नाटक और रंगमंच ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है। यह यात्रा 19वीं सदी में आरंभ हुई थी तथा आज़ादी के बाद नए रंग आंदोलन के रूप में जिसने गति पकड़ी, वह आज भी निरंतर जारी है। आज भी यह प्रयास जारी है कि हिंदी रंग जगत को विभिन्न शैलियों और प्रयोगों से समृद्ध किया जाए, जिसमें न केवल हमारी प्राचीन नाट्य परंपरा, मध्यकालीन भाषा, नाट्य पारसी रंग परंपरा, लोक नाट्य परंपराओं आदि का योगदान हो, बल्कि पाश्चात्य और विश्व के अन्य नाट्य परंपराओं का समुचित प्रयोग हो।
1: हिंदी रंगमंच अभी इस विषय पर प्रकाश डाल रही थी गीता शर्मा। अब आज का हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको याद दिला दें, संगम संगीत में अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे आशा भोसले को, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज़ एट 9 रात 9 बजे प्रसारित होगा। स्पॉटलाइट का एक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:15 पर और पब्लिक स्पीक सुनेगा 9:30 पर। फिल्म गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। नीचे सुनिए हमारा सुगम संगीत। कलाकार हैं आशा भोसले।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: इसी साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी गोरखपुर है, कुछ ही बोलो में समाचार होंगे।
1: कुमार, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत

0: की प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध

0: आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engaged for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history, beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lord's.

0: बद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बावलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
1: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है सर?
1: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे
0: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में है। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
0: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर? तो
1: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए,
0: जी
1: कहते थे पहली बार

0: बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारी छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित, हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाएं, लूज सैंड, ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसे, उस पर निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, बट अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूँकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीज़ों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जिसे सरकार की तरफ से कुछ जिसे कैसे अभी घर सुर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी, अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूँ तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहाँ के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को ख़त्म हुआ था। माफ़ी चाहूँगा यदि मेरा जवाब ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी ज़रूरी है कि जो
1: है।
0: जी तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बनस काठा का एग्जाम्पल

0: your other example, जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और तो ये भी प्रेरणा,
0: ये प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन,
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूँगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर, सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए ज़मीन के स्तर पे और ज़मीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया। फिर मैंने सैंड का, सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी,
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुँच जाए। शॉर्ट आंसर, There's no differentiation. Long answer, मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, आज जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
3: नमस्कार
1: रमाकांत जी।
0: नमस्कार
3: रमाकांत
0: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
0: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ ज़रूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनक लता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे ज़मीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
1: भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है, जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है,
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं, नंबर है 2331048 2371717 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी की जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
0: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या इस्टेब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार
1: होए,
0: तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: उसका जो स्तर ऊपर
0: हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को ख़त्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे वहाँ की जनता ने, वहाँ के क्राउड ने, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने, वहाँ की इंडस्ट्री ने, वहाँ के NGOs ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं,
1: ज़्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि

0: करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था। तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोग,
1: लोगों की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है
1: जी,
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूँ, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से ये शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छे रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई संस्थाएं सरकारी
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं
1: जी,
0: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फ़ोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम

0: हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफ़ी हो रही है। ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाएं, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली। एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
0: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
0: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
1: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
0: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
0: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने लता मंगेशकर और मुकेश को सुना। फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। गीतकार थे संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनिए मीर तकी मीर का लिखा हुआ गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम बाजार, संगीतकार खय्याम।

कैशम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का गाना। गीत लिखा है साहिर ने, संगीतकार हैं खय्याम और आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मालकोस। संगीत कर रहे हैं तबले पर आनंद चटर्जी और बांसुरी पर रूपा कुलकर्णी।